印度这里广播电台，听众朋友，我们现在播送加拿大民间歌曲，请收听。

合作。印度的里广播电台听众朋友们，刚刚收听的是一篇短片，题目为英美在广场与西图林有的合作。

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखाने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: जी बजकर 55 मिनट होने को है, लीजिए अब सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास

0: हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार, मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में

0: इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूं।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका।

0: ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। The headlines. Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Damwon.

0: प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या होता है मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसीतर खिदमात फराहम कर रहे हैं जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मियारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में यह मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की जेर क्यादत इस पहल पीएमएसएमई का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाकये की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की इज्जत में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने विफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अलावामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरिए एशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अरशद खान और

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 8:45 और ठीक 20 सेकेंड हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम स्वर गंगा का। स्वर गंगा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुप्रिया मैत्रा से ध्रुपद गायन, जिसमें आप सुनेंगे राग अहीर भैरव। संगत कलाकार है पखवाज पे हरीश चंद्रपति।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुप्रिया मैत्रा से ध्रुपद गायन सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना राग अहिर भैरव। संगत कलाकार थे पखावज पर हरीश चंद्रपति। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 9:15 होने को है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अंगदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। एक मृत दाता अपने अंगों और उत्तकों से 8 से अधिक लोगों का जीवन बचा सकता है या संवार सकता है। हालांकि वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी जागरूकता के अभाव में समाज में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो इस नेक काम में बाधा बनती हैं। अंगदान के प्रति भ्रांतियां और आवश्यक वैज्ञानिक जागरूकता। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अंगदान के लिए जागरूकता फैलाकर हजारों लोगों को जीवन दान दिलाने वाले उद्योगपति, समाज सेवी और पद्मश्री 2026 से सम्मानित नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला से महेंद्र सिंह लालस की ये बातचीत।
1: आज हमारे साथ हैं नीलेश मांडलेवाला जी। आपने अंग दान को लेकर देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसीलिए आप पद्मश्री से भी सम्मानित हुए हैं। नीलेश जी, थोड़ी सी इस अंग दान पर बात करें, उससे पहले थोड़ा सा ये समझाएं कि ब्रेन डेड क्या होता है और ब्रेन डेड के बाद क्या व्यक्ति का अंग दान करवाया जा सकता है और उसमें जीवन की कोई आशा या आकांक्षा नहीं होती।
2: ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, उसका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, ऐसी अवस्था ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड होने की वजह हम कहे तो रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी होती है, उनमें छोटा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, या तो ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज की वजह से जब छोटा ब्रेन काम करना बंद कर देता है तभी हम उनके ऑर्गन्स के डोनेशन करवा सकते।

0: है। हर एक अस्पताल में ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेरेशन कमिटी होती है, 4 डॉक्टरों की कमिटी होती है। जो व्यक्ति ब्रेन डेड है, जो ऐसा लगता है, तो उसको पहले क्लिनिकली देखते हैं। क्लिनिकली देखने के बाद में उनको एपनिया टेस्ट करते हैं, और एपनिया टेस्ट करने के बाद में यदि वो ब्रेन डेड है तो उनका ऑर्गन्स के डोनेशन हो सकता है।
1: कौन कौन से अंग दान दिए जा सकते हैं एक ब्रेन डेड व्यक्ति के?
0: एक ब्रेन डेड व्यक्ति के जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, उनके अलावा हैंड्स का भी डोनेशन हो सकता है। उनके साथ में हम टिश्यू के भी दान कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्निया है, स्किन है, बोन्स है, हार्ट वाल्स है। ऐसे हमारे सॉलिड ऑर्गन्स एज वेल एज टिश्यू के डोनेशन ब्रेन डेड के किस्से में होते हैं। नेचुरल डेथ में हम केवल टिश्यू का ही दान कर सकते हैं। आज ऑर्गन जो डोनेशन और एलोकेशन, वो दोनों प्रक्रिया अलग है। हमारे देश में ऑर्गन एलोकेशन और अवेयरनेस का काम नोटो के अंदर में होता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है।
1: मतलब कोई भी व्यक्ति सीधा अगर अंगदान करना चाहे तो नहीं कर सकता?
0: नहीं कर सकता। उसके नोटो ने पूरे देश में अंगदान का एलोकेशन और अवेयरनेस के लिए 5 रीजियन बने हैं, यानी रोटो बनाए हैं, और उनके बाद में आता है सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। देश में किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऑर्गन्स की खराबी होती है तो वो जो भी अस्पताल में ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, वो अस्पताल में उनको जाके पूरा रिपोर्ट्स के साथ में नाम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होती है, और उनके बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, उनके अलग अलग रिपोर्ट्स निकालने के बाद में वो सोटो के अंदर रजिस्टर्ड होती है, नोटो में भी रजिस्टर्ड होती है। जब भी कोई ऑर्गन्स डोनेशन होता है तो पहले सोटो को इन्फॉर्म किया जाता है, और सोटो उनके वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उनका एलोकेशन करते हैं। तो उसके अंदर दूसरी कोई किसी की प्रक्रिया बीच में आती नहीं है, और दूसरा कि किसी की भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए ऑर्गन्स का एलोकेशन नहीं होता है।
1: थोड़ा सही बताएं कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, ये भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और उसके साथ साथ इस अंग को सुरक्षित रखना। तो यदि किसी व्यक्ति का अंग आपने निकाला है, फर्ज कीजिए किडनी निकालिए, तो उसे क्या उसी वक्त ट्रांसप्लांट किया जाता है या उससे पहले सुरक्षित रखा जाता है?
0: नहीं, ऑर्गन्स तो क्योंकि ये हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं है, हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई ऐसी है कि बैंक वाली कोई बात नहीं है। जो हर एक ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट की समय की मर्यादा होती है, हृदय का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में करना होता है, लंग्स का ट्रांसप्लांट 6 घंटे में होता है, लीवर का 12 घंटे में, और किडनी 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करनी होती है। लेकिन ऑर्गन प्रोक्योर करने के बाद में जितने कम समय में हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं, उतना रिजल्ट उसका अच्छा होता है।
1: सक्सेस का क्या रेशियो इसमें रहता नीलेश जी?
0: हमने जो ये 20-21 साल की हमारी जो जर्नी है, उसमें हमने देखा है कि किडनी का जो बात करें तो करीबन 95% का सक्सेस रेट होता है, लीवर में भी 90% से ऊपर है, हृदय में भी, जो हमें पूरा देश का ध्यान नहीं है लेकिन अभी तक हम लोगों ने 57 हार्ट डोनेशन करवाए हैं सूरत से, तो वो सक्सेस रेट मेरे ख्याल से वो भी 90% से ऊपर होगा। क्योंकि जो डेट होती है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद डेट होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि फॉलोअप नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, वो उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है वो नहीं करते, उसी वजह से भी डेट होती है। लेकिन रिजल्ट ट्रांसप्लांट के अच्छे, इवन मैं हैंड्स का भी ट्रांसप्लांट की बात करूं, 2021 में हमने देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड्स का डोनेशन करवाया था, 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशन हुआ था, और 31 साल के युवान में वो ट्रांसप्लांट हुआ था। आज 4 साल ट्रांसप्लांट के हो गए, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अभी वो 3-व्हीलर व्हीकल चलाता है, स्विमिंग करता है और शीर्षासन भी करता है। तो जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो हमेशा हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है, तो उनकी जो दवाई है या फॉलोअप है वो रेगुलर रखना पड़ता है।
1: नीलेश जी, आपने जो अब तक अंग दान करवाए हैं, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, ये सारे ब्रेन डेड व्यक्तियों के ही थे?
0: हाँ, यस। हमारे नेचुरल डेथ में तो ऑर्गन डोनेशन होते नहीं है, जो ब्रेन डेड है उसका ही ऑर्गन डोनेशन होता है, और वही हम लोग करवा रहे हैं।
1: नीलेश जी, ये आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया, बताएं कि अब तक जो आपने किया उससे संतुष्ट है?
0: ऐसे मानो तो संतुष्ट है, और ऐसे मानो तो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि अभी भी

0: हमारे देश में कितने ऐसे प्रांत हैं वहाँ पे अब आज की तारीख में भी अंगदान के विषय की चर्चा नहीं होती है और अंगदान ना के बराबर है। और हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने एक मिशन भी बनाया कि जो वर्ष 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। तो ये मिशन लेके हमारी संस्था डोनेट लाइफ चल रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई बार बार मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को भी अंगदान का महत्व समझा रहे हैं। और उन्होंने जो 2047 की परिकल्पना हमें दिखाई है कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत होगा तो उसमें हम भी ये अंगदान के माध्यम से हमारा योगदान देंगे।
1: नीलेश भाई, बहुत सारी जगहों पर अंधविश्वास मिथ ऐसी चीजें जैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आपकी आंखें चली गई हैं फर्ज कीजिए तो हो सकता है मृत्यु के बाद ही तो हम अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे। इस तरह के बहुत सारे वहम बहुत सारे लोगों में होते हैं, आपको भी शायद इनका सामना करना पड़ा होगा।
0: महेंद्र जी, मैं पिछले 20 सालों से ये सब चीजों का सामना कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आंखों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं उनको बताता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है और हम जो उनके पार्थिव देह का अग्निदाह देते है वो तो एक खोखा ही होता है। तो लोग बोलते हैं कि हमें अंगदान नहीं करना चाहिए, तो मैं उन लोगों को पूछता हूँ कि हमारे समाज में ऐसी कितनी माताएं हैं बहनों हैं कि जिनको यूट्रस की तकलीफ होती है, ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ होती है, उनका यूट्रस निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम तो हो ही गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसी माता बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे भाइयों में गोल्ड ब्लैडर की तकलीफ होती है, उनका गोल्ड ब्लैडर निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम हो गया, शरीर खंडित हो ही गया। हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि परिवार में से ही एक किडनी का दान करते हैं। तो दो किडनी में से एक किडनी कम हो गई, शरीर खंडित हो गया, तो क्या ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? तो ये भ्रांतियां हमने दूर करने की कोशिश की है और लोग समझते भी है कि बात तो सही है। हम वही संदेश लोगों को देते हैं कि आपके ब्रेन डेड स्वजन के अंगों की स्वर्ग में जरूरत नहीं है किंतु पृथ्वी पर है। और दूसरा जो धार्मिक मान्यता की बात है तो हम लोगों को बताते हैं कि पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था और महर्षि दधीचि ऋषि ने जब ये दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। हमारे डोनेट लाइफ संस्था का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के वरद हस्ते हुआ था। उस समय दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियां रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा, हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते धन्य हो रही होगी, हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी, हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़ मांस मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा, नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम।
1: बहुत सुंदर नीलेश जी, फिर ऐसे भी आपके सामने बहुत सारे अनुभव आए होंगे जब बहुत सारे लोगों ने परिवार जनों ने कहा होगा कि देखिए आज हमारा स्वजन तो नहीं रहा लेकिन उस व्यक्ति से मिले होंगे जिसको उसका हृदय लगा है और आभार व्यक्त करते होंगे।
0: ये जो संबंध है ये संबंध खून के संबंध नहीं है, ये संबंध का नाम है मानवता। मानवता से बड़ा कोई संबंध नहीं है। और जब भी परिवार मिलता है ऐसे तो नामों की घोषणा नहीं की जाती है लेकिन वो आज सोशल मीडिया का माध्यम ऐसा है, प्रिंट मीडिया का माध्यम ऐसा है और एक दूसरे को जब भी मिलना होता है तभी जो दृश्य बनते हैं वो कभी शब्दों में भी बयां नहीं किए जा सकते हैं। हमने जो भी ऑर्गन डोनेशन करवाए हैं, कितने परिवार उनके बेटे की शादी में आए हैं, एक परिवार के आपस में रिश्ता बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ा रिश्ता है, वो रिश्ते का नाम है मानवता।
1: नीलेश जी, 2 दशक से ज्यादा समय से आप ये समाज का ये सुंदर कार्य कर रहे हैं, आपको राष्ट्रपति जी ने सम्मानित भी किया, बताएं कि संतुष्ट हैं इस सम्मान से?
0: आज मैं तहे दिल से भारत सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने पद्मश्री से हमें सम्मानित किया और खास करके हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हूँ, लेकिन ये

0: सम्मान जो है हमें मिला है ये सम्मान नीलेश मांडलेवाड़ा या डोनेट लाइफ का सम्मान नहीं है, ये सम्मान है जो भी संस्थाएं या जो भी व्यक्ति देश में अंगदान के कार्य से जुड़ी हुई है ये तभी का सम्मान है। और ये सम्मान से सरकार ने हमें एक जिम्मेवारी दी है, सरकार ने जो विश्वास हमारे ऊपर रखा है वो विश्वास को सार्थक करने की जिम्मेवारी अब हमारी है। हमें अंगदान जीवन दान के मिशन को पूरे देश में फैलाना है, जन जन तक लोगों को जागरूक करना है कि शरीर तो राख ही हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि हम उनके अंग दान करवाए, क्योंकि हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। और मैं मानता हूँ ये सम्मान जो मिला है ये सम्मान, मैंने आगे भी कहा, ये हमारा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये सम्मान ये अंगदान की प्रवृत्ति का सम्मान है, ये सम्मान है जितने भी अंगदाता है और उनके परिवारजनों का सम्मान है, ये सम्मान है जो भी डॉक्टर्स अस्पताल अंगदान के कार्य के साथ जुड़ी हुई है ये इनका सम्मान है, जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जो सहयोग दे रही है ये उनका सम्मान है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का सम्मान है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में आधी रात को भी जो पीएम करके जो उसके बॉडी हैंडओवर करती है ये इनका सम्मान है, और खास करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के जिन्होंने पिछले 20 सालों से अंगदान जीवन दान का संदेश जन जन तक पहुंचाने में जो सहयोग दिया है इन सभी का सम्मान है।
1: नीलेश मांडलेवाला जी, आप देह रूप में तो नहीं रहेंगे एक निश्चित समय बाद, लेकिन आपने जो कार्य किए वो इस सृष्टि पर हमेशा अमर रहेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अंगदान के प्रति भ्रांतियां और आवश्यक वैज्ञानिक जागरूकता, अभी आप अंगदान के लिए जागरूकता फैलाकर लोगों को जीवन दान दिलाने वाले उद्योगपति और समाज सेवी पद्मश्री से सम्मानित नीलेश विनोद चंद्र मंडलेवाला से महेंद्र सिंह लालस की ये बातचीत आप सुन रहे थे। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश

0: London.
1: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, हर दिन अपने साथ लेकर आता है एक नई ऊर्जा और साथ ही लेकर आता है नए अनुभव, नई जानकारियां और बहुत सारी संभावनाएं भी। तो इन्हीं बातों को आज आपसे साझा करने के लिए लेकर आई हूं आज का घर आंगन कार्यक्रम। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम घर आंगन में मेरे साथ यानी कि प्रतिभा के साथ। और हाँ श्रोताओं, हमें इंतजार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का, क्योंकि आपकी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारा मनोबल बढ़ाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम कार्यक्रम को आपके लिए और भी बेहतरीन बनाएं। और साथ साथ आज हम उन सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो रोज हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं। तो अपने सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी प्रेम पर्वत। श्रोताओं, आज महान जननायक और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम

के अग्रदूत बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया और उल गुलान यानी महाविद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों को उनके अधिकारों, संस्कृति और स्वाभिमान के प्रति जागरूक किया। उनके संघर्ष से ब्रिटिश सरकार को आदिवासी भूमि और अधिकारों से जुड़े कानूनों में बदलाव करने पड़े। 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में हराकर जीत अपने नाम दर्ज की है। दिव्या ने क्लासिकल गेम ड्रॉ रहने के बाद आर्मगेडन टाई ब्रेकर मुकाबले में जू वेंजून को हराया। श्रोताओं, दिव्या देशमुख का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने कम उम्र में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जब उन्होंने कोनेरू हम्पी को हराकर फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता और इसके साथ ही वो महिला शतरंज विश्व कप विजेता बनी और उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ। आज दिव्या देशमुख की प्रतिभा और धैर्य के दम पर शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ियों में उनका नाम शामिल है और दिव्या देश की कई महिलाओं के लिए आज एक नई प्रेरणा बन चुकी हैं।

प्रोफेसर, ये था इस फिल्म का नाम जिसका आपने गीत सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और अब बात करेंगे लखनऊ नगर निगम की उस पहल की जो कि है RRR, यानी रिड्यूस रियूज रिसाइकल सेंटर। इस सेंटर की शुरुआत मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत की गई, जिसके माध्यम से अब शहर के नागरिक अपने जो पुराने सामान है, जो उनके घरों का पुराना सामान है, उसको यहाँ दे रहे हैं और एक नया जीवन उसको देने के लिए ये सेंटर खोले गए हैं। जो चीज़ें आपके घरों में उपयोग में नहीं आ रही हैं, जैसे कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, किताबें और भी बहुत कुछ, उन्हें पुनः उपयोग करने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य कचरा कम करना, संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करना और पर्यावरण की रक्षा है। इस सेंटर में जो सामान आपकी ज़रूरत का नहीं है, यानी जिसका उपयोग आप काफ़ी समय से नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ कुछ अपनी ज़रूरत का सामान दिखता है तो वो आप अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। श्रोताओं, इस सेंटर पर कपड़ा बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंक, खिलौना बैंक, किताब

बैंक, बर्तन बैंक और जूता चप्पल बैंक आदि बनाए गए हैं और इन बैंकों के जरिए नगर निगम जरूरतमंद जो लोग हैं उन तक इन चीजों को पहुंचा रहा है और बचे हुए सामान को रिसाइकिल करके उन्हें एक नया रूप भी दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक ऐसे 26 सेंटर खोले जा चुके हैं। श्रोताओं, एक सकारात्मक पहल जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है, तो इस तरह के प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा है और आज के समय की जरूरत भी, तो क्यों ना एक पहल हम सब भी करें।

किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी पराया धन। श्रोताओं, प्राकृतिक संपदा हम सभी के लिए जीवन है, या यूं कहें कि ये प्रकृति का वरदान है। भूमि, जल, वायु मिलकर एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं जिसमें जीवन का पोषण होता है, और एक ही भी जो संसाधन है उसकी अगर कमी हो जाए तो इस पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है और बिगड़ भी जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये संसाधन सीमित है, ऐसे में जरूरत हो जाती है उनके संचयन की, खास करके जल संचयन की, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। श्रोताओं, धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3% पानी मीठा है, यानी कि सिर्फ 3% पानी है जो पीने के लायक है, और इसमें से अधिकतर पानी भी जो है ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है। हमें सजग होना होगा, पानी को बचाकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेहद खास है। वर्षा जल संचयन एक ऐसी तकनीक है जिसमें बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से बचाने के लिए इकट्ठा किया जाता है, और इस पानी को साफ करके या सीधे जमीन के अंदर पहुंचाकर भविष्य के उपयोग के लिए सहेजा जाता है। आमतौर पर इसके दो प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं, एक है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, यानी छतों पर जल संचयन। इसमें घर या इमारत की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइपों के जरिए इकट्ठा किया जाता है, और दूसरा है भू जल पुनर्भरण, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इस विधि में छत या खुले मैदान के पानी को पाइप या नालियों के माध्यम से सीधे जमीन में बने सोखता गड्ढे यानी रिचार्ज पिट में या कुओं में भेजा जाता है, ताकि भूजल स्तर ऊपर उठ सके। साथ ही साथ आज बड़ी बड़ी सोसाइटीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स भी लगा रही हैं, ताकि जल संचयन किया जा सके, साथ ही बचे हुए पानी को सोसाइटीज जमीन में बने

बारिश के पानी को पाइपों के जरिए इकट्ठा किया जाता है, और दूसरा है भूजल पुनर्भरण यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इस विधि में छत या खुले मैदान के पानी को पाइप या नालियों के माध्यम से सीधे जमीन में बने सोखता गड्ढे यानी रिचार्ज पिट में या कुओं में भेजा जाता है ताकि भूजल स्तर ऊपर उठ सके। साथ ही साथ आज बड़ी बड़ी सोसाइटीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स भी लगा रही हैं ताकि जल संचयन किया जा सके। साथ ही बचे हुए पानी को सोसाइटीज जमीन में बने

और जगदलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं, और ये विशाखापट्टनम से किरंदुल जाती है, और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थित अनंतगिरी पहाड़ियों से गुजरती हुई ये ट्रेन प्राकृतिक नज़ारों का भरपूर आनंद भी देती है। और सबसे खास बात यह है कि इस रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनों में आधुनिक विस्टाडोम कोच भी लगाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि विस्टाडोम कोच भारतीय रेलवे के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विशेष पारदर्शी कोच हैं। इनमें पारदर्शी कांच की छतें होती हैं, जिसमें यात्री ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ही आसमान, पहाड़ों और सुंदर घाटियों का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि सामान्य कोचों के मुकाबले इनमें चौड़ी और बड़ी खिड़कियां होती हैं, जो देती हैं एक अनोखा अनुभव। और साथ ही साथ कोचों की कुर्सियां 180 डिग्री तक घूमती है, जिससे आप खिड़की की ओर मुंह करके नज़ारा ले सकते हैं। श्रोताओं, भरपूर आधुनिक सेवाओं से जो लैस ये ट्रेन है, ये अरकू घाटी के बेहद खूबसूरत और दुर्गम इलाकों से गुजरती है और आपको देती है प्राकृतिक नज़ारों, झरनों और 58 सुरंगों और 84 बड़े पुलों और 1,187 छोटे पुलों का पूरा आनंद। तो वास्तव में कोटा वलसा किरंदुल लाइन का सफर अपने आप में एक रोमांच भरा और अविस्मरणीय सफर है। तो अगर आप भी कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप इस रेल यात्रा को अपनी आइटनरी में जगह दे सकते हैं।

अजनबी इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, घड़ी ने मुझे इशारा कर दिया है कि मैं अब आपसे लूं इजाजत, तो इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और दिन इसी वक्त। तो दीजिए मुझे यानी प्रतिभा को अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador P. Harish, said that Islamabad was merely attempting to deflect blame onto New Delhi.
3: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. India stands steadfast in rejecting terrorism in all its forms and manifestations.
2: New Delhi condemned Islamabad's cross-border military operations, holding Pakistan accountable for significant civilian casualties resulting from its aerial assaults in Afghanistan. The Enforcement Directorate is conducting search operations at six premises across Punjab, Uttar Pradesh and Delhi NCR in connection with a money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. The case is linked to Aam Aadmi Party leader and Punjab Minister Sanjeev Arora. According to the probe agency, it uncovered a large-scale money laundering operation allegedly carried out through entities linked to Mr. Arora. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to freedom fighter Bhagwan Birsa Munda on his Martyrdom Day. In a social media post, Mr. Modi said Birsa Munda fought against foreign rule with indomitable courage to protect water, forests and land. Mr. Modi said the saga of his supreme sacrifice for the motherland will continue to inspire a spirit of patriotism in every generation of the country. In the Philippines, the death toll has climbed to 37 after the 7.8 magnitude offshore earthquake that hit the southern part yesterday. More than 500 people were injured while 4 people were missing. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has said agencies were coordinating the disaster response. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 215 points to 73,739, while the Nifty added 80 points to 23,203 when reports last came.

0: In men's cricket, India A were 210 for 3 in 42.4 overs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at Sri Lanka when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर. श्रोताओं, अब चालू है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से. जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शिल्पा गोस्वामी और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से. दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनेमा के सुनहरे पन्ने सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल इंद्रप्रस्थ पर. आज हम बात करेंगे साल 1972 में जब सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने एक्शन, इमोशंस, ड्रामा और संगीत का ऐसा कॉकटेल बनाया था कि लोग झूम उठे थे. जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म रामपुर का लक्ष्मण की. और दोस्तों, जब बात इस फिल्म की हो तो पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं. तो चलिए, जो हमारा शो है उसकी शुरुआत करते हैं किशोरदा की आवाज में इस फिल्म के धमाकेदार टाइटल ट्रैक से.

0: क्या बात है, पंचमदा का म्यूजिक, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और किशोर कुमार की जादुई आवाज। दोस्तों, इस गाने में रणधीर कपूर साहब का वो धोती कुर्ता वाला लुक और लाठी घुमाने का अंदाज आज भी लोगों के जहन में ताजा है।
1: क्या कहा?

दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। फिल्म में लीड रोल में थे पृथ्वीराज कपूर के पोते और राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर। और दोस्तों उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी बेहद ही खूबसूरत हीरोइन रेखा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रुकिए, इस फिल्म की जो जान थे इसके विलन थे, यानी हमारे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। उनके अलावा फिल्म में सुलोचना, मनमोहन कृष्णा और रमेश देव जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थी।

दोस्तों, आप थोड़ा सा रुक करते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। मनमोहन देसाई की फिल्म की एक खास बात होती थी, यानी बचपन में बिछड़ जाना, ये उनकी कहानी में ज़रूर होता था। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विभाजन के वक्त एक ट्रेन हादसे में केदारनाथ भार्गव का परिवार बिखर जाता है। दो भाई राम और लक्ष्मण अलग हो जाते हैं। लक्ष्मण यानी रणधीर कपूर अपने पिता के साथ रामपुर गांव में पलता बढ़ता है। एकदम सीधा साधा भगवान राम का परम भक्त। वहीं उसका बड़ा भाई राम यानी शत्रुघ्न सिन्हा किस्मत के थपेड़ों के कारण मुंबई में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कुमार बन जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लक्ष्मण के बचपन का जो दोस्त प्रकाश एक मर्डर केस में फंस जाता है और लक्ष्मण उसे बचाने मुंबई आता है। वहां वह लुई डिसूजा का रूप बदलकर एक गैंग में शामिल हो जाता है जिसका बॉस कोई और नहीं होता बल्कि उसका अपना सगा भाई राम होता है। अब क्या लक्ष्मण अपने बेगुनाह दोस्त को बचा पाएगा या अपने भाई को कानून के हवाले करेगा, यही इस फिल्म का हाई पॉइंट है।

साथियों, इसी ड्रामे के बीच जब रेखा और रणधीर कपूर का रोमांस स्क्रीन पर आता है तो ये भारतीय सिनेमा का इतिहास बन जाता है। और अब सुनते हैं इसी पे दर्शाया ये गीत।

दोस्तों, फिल्म का बेहद मशहूर और भावुक भजन हमने अभी आपको सुनवाया, जिसे फिल्म में सुलोचना जी गाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि आरडी बर्मन यानी पंचम दा ने इस गाने की धुन एक मशहूर रशियन कंपोजर सरगेई प्रोकोफे के लेफ्टिनेंट कीजे सुटेक रोमांच थीम से प्रेरित होकर बनाई थी। जी हाँ, विदेशी धुन को भारतीय भजन में ढालना सिर्फ पंचम दा के ही बस की बात है।

दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का वो सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाने वाला स्टाइल इस फिल्म में इतना पॉपुलर हुआ कि लोग सिनेमा घरों में तालियां बजाते नहीं थकते थे। कई लोगों को लगता है कि यह स्टाइल रजनीकांत साहब का है, लेकिन सच यह है कि रजनीकांत ने इंडस्ट्री में आने से पहले शत्रुघ्न सिन्हा के इस अंदाज से काफ़ी प्रेरणा ली थी।

साथियों, इस फिल्म की बम्पर सफलता को देखते हुए साल 1978 में इसका तमिल रिमेक भी बनाया गया था, जिसका नाम था मंगूड़ी माइनर।

दोस्तों, अब समय की घड़ी इशारा कर रही है कि आपसे अनुमति ले ली जाए, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजीला टनल में पेशरफ्त हुई है और वादी कश्मीर नीम लद्दाख के दरमियान फासला कम हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के मौके पर आज नई दिल्ली में मुल्की सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। और मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के शहर दम्बोला में 3 मुल्कों की ए सीरीज का पहला मैच भारत ए और श्रीलंका ए के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार एतमाद, तरक्की और अवाम के बहबूद के तहत अहदबस्ता है। वजीर आजम ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज एक जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में काम काज को एक मुत्तहिदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है, जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तई मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगम मिलिटेंट ग्रुप को फितनउल हिन्दुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पर्वत नैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी निजाम और सरकार चलाने में उसके फौजी बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुक्काम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के सरहद पार की फौजी सरगर्मी की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस

13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूदात पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तिरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वज़ीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एतबार से अहम प्रोजेक्ट जोजिला टनल में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर और लद्दाख के दरमियान सभी मौसमों में आमदोरफ्त वाली इस सड़क से फासला काफी कम हो गया है। इस तरह 10 साल से जारी ये ख्वाब पूरा हो गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर इस पेशरफ्त का आगाज किया। ये तकरीब लद्दाख में मिनीमर्ग में टनल के मशरकी पोर्टल के करीब मुनाकिद की गई। जोजिला टनल मुल्क की दिफाई एतबार से सबसे अहम सड़कों में से एक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब में छह जगहों पर काले धन को जायज बनाने के मामले में तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इस मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड मुलविस है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली नोएडा खित्ते में ये तलाशियां की ली जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम के मुताबिक हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वाबस्ता अफराद की कारोबारी दफातर और घरों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। इस मामले का ताल्लुक आम आदमी पार्टी के रहनुमा और पंजाब के वजीर संजीव अरोड़ा से है। डायरेक्टोरेट के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर फर्जी GST दिखाई गई। बाद में इस माल को बरामदी माल दिखाकर मुबैना तौर पर नाजायज रकम को दुबई से भारत मुंतकिल किया गया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क की खारजा पॉलिसी में पिछले 12 साल के दौरान काफी ज्यादा तब्दीली आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने आम शहरियों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजात की तस्दीक करने की बिला रुकावट सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शिकायतों को दूर करने और शहरियों की राय हासिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आगाज किया है और किसी तरह की परेशानी की सूरत में मौसर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आलमी सतह पर काम की जगहों के लिए भारतीय शहरियों को रसाई फराहम की है और भारतीय ताजिरों को बैरून मुल्क मार्केट तक रसाई हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन इकदामात से बरामदात में इजाफा करने में मदद मिली है और भारतीय मसनूआत नीज खिदमात को नई मार्केट तक पहुंचाने में सहूलत फराहम हुई है। बाकी मुल्क की तरह झारखंड में भी आज अजीम मुजाहिद आजादी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गवर्नर, वजीर आला, वुजरा और कई दीगर शख्सियात ने रांची में कोकर समाधि स्थल जाकर उनकी गुलहाय अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरी और वजीर आजम समेत बहुत से रहनुमाओं ने भगवान बिरसा मुंडा को खिराज अकीदत पेश किया है। उनकी शहादत के दिन के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जुरश, शुजात और खुददारी की अलामत थे और वो इंसाफ में गैर मुतजलजल यकीन रखते थे। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज के इब्तदाई मैच में भारतीय टीम ए श्रीलंका टीम ए के साथ जीत के लिए 278 रन का निशाना रखा है। भारतीय टीम की टीम 6 विकेट पर 277 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारतीय टीम ए के स्किपर तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़

0: चार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे संगीतकार की कहानी जिनका नाम शायद हर श्रोताओं की जुबान पर ना हो लेकिन उनकी धुनें आज भी दिलों में बसती हैं। वो संगीतकार जिन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं माना बल्कि उसे भावनाओं की भाषा बनाया। आज बात होगी सिनेमा के उस संगीतकार की

जिनकी धुनों में शास्त्रीयता, लोक संगीत और भावनाओं की गहराई एक साथ सुनाई देती है। आज बात होगी वसंत देसाई की, जिनकी रचनाओं में भारतीयता की

वसंत देसाई का जन्म 9 जून 1912 को हुआ। बचपन से ही संगीत और कला की ओर उनका झुकाव था। शुरुआती दिनों में उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी संगीत। उनका सफर जुड़ा भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के प्रतिष्ठित बैनर प्रभात फिल्म कंपनी से। यहाँ उन्होंने काम करते हुए संगीत की बारीकियाँ सीखी और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। वसंत देसाई मानते थे कि संगीत केवल धुन नहीं, एक अनुभव है।

दोस्तों, आपको बता दें कि वसंत देसाई के संगीत की सबसे बड़ी खासियत थी भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ। उन्होंने कभी भी केवल लोकप्रियता के लिए संगीत नहीं बनाया, उनकी धुनों में लोक रंग, शास्त्रीयता और भावनात्मक गहराई साफ सुनाई देती है। उनका संगीत कई फिल्मों में दर्शकों को सुनने और महसूस करने दोनों का अवसर देता था। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं गुड्डी, झनक झनक पायलबाजी, दो आंखें बारह हाथ, संपूर्ण रामायण, गूंज उठी शहनाई, आशीर्वाद, अमर ज्योति जैसी फिल्में। इन फिल्मों में संगीत कहानी का हिस्सा बन जाता था।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आपके साथ मैं हूं आज अर्चना गोयल। कहा जाता है कि वसंत देसाई किसी भी गीत को रिकॉर्ड करने से पहले उसके भाव को बहुत महत्व देते थे। दो आंखें बारह हाथ का गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम आज भी प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। ये सिर्फ गीत नहीं एक संदेश बन गया। वहीं झनक झनक पायल बाजे में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय सिनेमा के साथ इस कदर जोड़ा कि दर्शकों को लगा कि जैसे वो कोई संगीत समारोह सुन रहे हों। उनकी रचनाओं में भारतीय वाद्यों का प्रयोग बेहद संतुलित होता था। वो उन कलाकारों में थे जिन्होंने ये साबित किया कि संगीत की उम्र नहीं होती। उन्होंने ऐसे दौर में काम किया जब फिल्मों में संगीत तेजी से बदल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी मौलिकता नहीं छोड़ी। उनकी धुनें आज भी संगीत प्रेमियों और सीखने वालों के लिए प्रेरणा है। उनका संगीत हमें याद दिलाता है कि सादगी भी गहरी हो सकती है।

मुसहर देसाई ने वी शांताराम की कई फिल्मों में संगीत दिया। 50 के दौर के बाद दोनों में कुछ खटास आ गई। उसके बाद उन्होंने साथ में कभी काम नहीं किया। वाणी जयराम के साथ फिल्म गुट्टी का गीत बोली रे पपिहरा भी काफ़ी मशहूर हुआ। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में संगीत दिया जो काफ़ी पसंद किया गया, जिनमें अमर भोपाली, श्यामची आई, लक्ष्मण रेखा, छोटा जवान मुख्य फिल्में रहीं। 1940 के दशक में उन्होंने अपनी शुरुआत प्रभात फिल्म कंपनी से की, जिसमें उन्होंने गाया और गीतों की रचना की और एक्ट भी किया। ये फिल्म थी धर्मात्मा और संत ध्यानेश्वर। 22 दिसंबर 1975 को मात्र 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

तो श्रोताओं, आज हमने जाना उस संगीत साधक को जिसने सुरों को पूजा की तरह जिया। बसंत देसाई भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे साथ हैं। हर पल उस पल में जब कोई गीत दिल को छू जाए, इसी भावना के साथ अब मैं अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ। सुनते हैं उनकी अमर रचनाओं में से एक।

हम आकाशवाणी दिल्ली के हिंदी प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज और डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में यह आवाज है लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनते हैं जांबाज फिल्म का ये दो गाना, आवाजें सपना और महेश की।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बज़्म ख्वातीन। सामईन, हम हमेशा अपने दिल की बात कहने के लिए अल्फाज के जंगल में उलझ जाते हैं। हम जो कहना चाहते हैं कहकर भी एक खला महसूस करते हैं कि शायद इससे भी अच्छा अंदाज हो सकता था, या हम जो कहना चाहते हैं कह नहीं पाए, या किसी और तरीके से कहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो खुदा ने हर मर्ज़ का इलाज इसी दुनिया में रखा है और शायर इस परेशानी का हल तलाश करने में कामयाब नज़र आते हैं। वो दो लफ्ज़ों में वो बात कह जाते हैं जिसके लिए पूरी एक बयाज भी कम पड़ जाए। जैसा कि गालिब ने कहा था कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो ये कमाल शायर का है कि शायर बात भी कह देता है, यानी कि बात भी हो गई और शिकायत भी रह गई और अपना काम भी हो।

0: गया। तो सामईन कराम, इसी तरह हमारे जज्बात और एहसासात का इजहार ख्वातीन ने भी बेहतर तरीके से किया है। ख्वातीन शायरा कहती हैं कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और इसी गज़ल का आखिरी शेर है कि अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है अब ख्वाहिश अंगराई की। तो ऐसे एहसासात और ऐसे जज्बात की अक्कासी लफ्ज़ों में करने का हुनर अगर किसी को आता है तो वो शायरों को आता है। मर्द हजरात शायरी की दुनिया में अपना सिक्का मनवा चुके हैं, वहीं ख्वातीन भी शायरी की दुनिया में अपनी शिनाख्त आप रखती हैं। तो सामीन, आज हमने बज़्म ख्वातीन के तहत मुशायरे की महफिल आरास्ता की है। आज इस महफिल की रौनक हैं मोहतरमा फरहीन शकील, मोहतरमा फहमीना अली, मोहतरमा मरियम मुख्तार और निज़ामत के फ़रायज़ अंजाम दे रही हैं मोहतरमा मारिया मुजफ़्फ़र। तो सामीन इकराम, लीजिए समात कीजिए ये मुशायरा।
1: इस मुशायरे में मैं मारिया मुजफ़्फ़र आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज का मुशायरा शायरात का मुशायरा है और इस ख़ास मुशायरे में जो शायरात शिरकत कर रही हैं वो हैं फरहीन शकील जो सहर तखल्लुस करती हैं, फहमीना अली, मरियम मुख्तार और मारिया मुजफ़्फ़र। साकिया ला जामे मैं, दरपेश है जंगे सुखन, साकिया ला जामे मैं, दरपेश है जंगे सुखन, है बजा तेगे जबां पर आज होना आपका। आज का मुशायरा शुरू करते हैं फरहीन शकील से।
2: आदाब सामेन, एक गजल पेश खिदमत है। मिल गई दिल को रिहाई हिजर की जंजीर से, मिल गई दिल को रिहाई हिजर की जंजीर से, आ गए हैं वो अगरचे आए हैं ताखीर से। मैंने सोचा था किसी पर खुल न पाएंगे मगर, मैंने सोचा था किसी पर खुल न पाएंगे मगर, राज मेरे खुल गए हैं सब मेरी तहरीर से। और शेर है, घर मिला कुछ को किसी को माल व दौलत मिल गई, घर मिला कुछ को किसी को माल व दौलत मिल गई, मेरे सर दस्तार आई बाप की जागीर से। एक सबक हमने पढ़ा है इश्क की तफसीर का, एक सबक हमने पढ़ा है इश्क की तफसीर का, गालिबो सौदाओ मोमिन और दर्दो मीर से, गालिबो सौदाओ मोमिन और दर्दो मीर से। और शेर है, जिससे मिलना ही नहीं था उससे मिलना क्यों लिखा, जिससे मिलना ही नहीं था उससे मिलना क्यों लिखा, बस यही शिकवा मुझे है कातिबे तकदीर से। और हर कोई गिरिया कुना है देख कर रोना मेरा, हर कोई गिरिया कुना है देख कर रोना मेरा, हर तरफ है दर्द मेरे दर्द की तासीर से। और मकता है, किरचियाँ इतनी हुई हैं मेरे ख्वाबों की सहर, किरचियाँ इतनी हुई हैं मेरे ख्वाबों की सहर, खून रिश्ता है मुसलसल इस दिले नखचीर से, खून रिश्ता है मुसलसल इस दिले नखचीर से। एक और गजल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। इसीलिए तुम्हारा मुझसे रब्त पेशो पस का है, इसीलिए तुम्हारा मुझसे रब्त पेशो पस का है, कि रूह कल्ब का नहीं मामला हवस का है, कि रूह कल्ब का नहीं मामला हवस का है। और है चांद चांद जब तलक है जब तलक पहुँच से दूर, है चांद चांद जब तलक है जब तलक पहुँच से दूर, वो इश्क जिसको कह रहे हैं खेल दस्तरस का है। और तू जिंदगी की इब्तिदा तू जिंदगी की इंतहा, तू जिंदगी की इब्तिदा तू जिंदगी की इंतहा, तू धड़कनों की रागिनी तू विर्द हर नफस का है। तुम्हारा गम भी बढ़ रहा है जैसे आदमी की उम्र, तुम्हारा गम भी बढ़ रहा है जैसे आदमी की उम्र, ये आज सात रोज एक माह दो बरस का है, ये आज सात रोज एक माह दो बरस का है। न मैं कमल न नस्तरन न जाफरान न गुलबदन, न मैं कमल न

0: तरन जाफरान गुल बदन, मेरा वजूद तो सरापा खाक व खार व खस का है, मेरा वजूद तो सरापा खाक व खार व खस का है। तुम एक बहर बेकरां हो तुम नसीमे सुबह दम, तुम एक बहर बेकरां हो तुम नसीमे सुबह दम, तुम्हें समेट ले सहर ये काम किसके बस का है। एक और गजल से चंद अशआर। हमारे साथ भी रहते हैं यूं हमारे दोस्त, हमारे साथ भी रहते हैं यूं हमारे दोस्त, फलक पे चांद के जैसे हैं ये सितारे दोस्त, फलक पे चांद के जैसे हैं ये सितारे दोस्त, तुम्हारी याद दिलाते हैं दिल जलाते हैं, तुम्हारी याद दिलाते हैं दिल जलाते हैं, हमारे सामने आते हैं जब तुम्हारे दोस्त। और जमीन पे सच्ची मोहब्बत की जब कमी पाई, जमीन पे सच्ची मोहब्बत की जब कमी पाई, खुदा ने अर्श से दुनिया में तब उतारे दोस्त। और हमारा मिलना किसी तौर भी नहीं मुमकिन, हमारा मिलना किसी तौर भी नहीं मुमकिन, हम एक नदी के हैं दो मुख्तलिफ किनारे दोस्त। हो कारगाहे जमाना या कार उल्फत हो कारगाहे जमाना या कार उल्फत हो, हमारे बख्त में आए हैं बस खसारे दोस्त। और मिला न कोई भी जब अपना गम सुनाने को, मिला न कोई भी जब अपना गम सुनाने को, तो मेरे पास चले आए गम के मारे दोस्त। और शेर है कि तुम ही को देख के आते हैं मेरे शेरों में, तुम ही को देख के आते हैं मेरे शेरों में, वफाओ उन्स व मोहब्बत के इस्तियारे दोस्त। और मकता है सहर ये कोई सिला है तुम्हारी नेकी का, सहर ये कोई सिला है तुम्हारी नेकी का, जो तुमने पाए हैं दुनिया में इतने प्यारे दोस्त। एक और गजल से चंद अशआर। मुश्किल है जिधर जाना उधर जाने की जिद है, मुश्किल है जिधर जाना उधर जाने की जिद है, मुश्किल है जिधर जाना उधर जाने की जिद है, रास्ता है न मंजिल है मगर जाने की जिद है। ये लोग बजिद हैं कि रहूं अपनी हदों में, ये लोग बजिद हैं कि रहूं अपनी हदों में, और मुझको मेरी हद से गुजर जाने की जिद है। और शेर है कि मैं हूं कि उसे सर पे बिठाने पे मुसिर हूं, मैं हूं कि उसे सर पे बिठाने पे मुसिर हूं, वो है कि उसे दिल से उतर जाने की जिद है। और शेर है कि सांसें हैं कि चलती ही चली जाती हैं पैहम, सांसें हैं कि चलती ही चली जाती हैं पैहम, और दिल को इसी लम्हा ठहर जाने की जिद है। और शेर है कि बुतखाना हो मस्जिद हो हरम हो या कलीसा, बुतखाना हो मस्जिद हो हरम हो या कलीसा, जाने दो मुझे मुझको अगर जाने की जिद है।
1: क्या बात है।
0: और मकता है कि ये कौन सी मंजिल है सहर यासो अलम की, ये कौन सी मंजिल है सहर यासो अलम की, ख्वाबों को मेरे खुद ही बिखर जाने की जिद है, ख्वाबों को मेरे खुद ही बिखर जाने की जिद है। बहुत शुक्रिया।
2: बहुत खूब, बहुत खूब। अभी आप फहीन शकील साहिबा को सुन रहे थे। सामईन, अपने आप को मधु करने का कोई तरीका अब तक मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि आप हमतन गोश हैं, इसलिए मैं इसी को दावत सुखन समझकर कुछ नज़में आपकी समातों की नज़र करती हूँ। नज़्म का उन्वान है आखिरत। किसी रोज़ जब इस ज़मी के सहारे बनी सब फसीलें गिरा दी गई हों, ये दुनिया और इसमें बसे सब ज़माने किसी एक नुक्ते पे आकर रुके हों, वो जब एक कालीन मसावात गम का अजल से अबद तक बिछाया गया हो, जहां भर के अफराद आला में हू को हवा में उठाए लिए फिर रहे हों, उसी रोज कुदरत जमी से फलक तक की राहों के पर्दे समेटे चलेगी, जो दुनिया फानी में महताब चेहरे कदम को बढ़ाए चले जा रहे हों, उन्हीं के कदम से कदम को मिलाए वो फितरत का प्याला पिलाती चलेगी। सभी दिल की धड़कन के अदना सिपाही की जहदे मुसलसल को रुखसत करेंगे, वो दारे फना की हकीकत समझकर वफा की अदालत की जानिब बढ़ेंगे, वहां हर तरफ अपने गुजरे जमानों की कब्रों के कतबे बहसरत पढ़ेंगे, वो सब लोग जिनके जमीरों ने अब तक मुरव्वत के जीने उतर कर हों देखे, किसी की खिरद के इहाते में अक्सर कई तीरों खंजर कई शरहों फेंके, खुदा की खुदाई के नगमे सुनाकर खुदा की रफाकत को ढूंढा।

0: करेंगे, जहां ज्यादे अफजल ने जिस रब के बंदों को जी के अजाबों में कस कर लपेटा, वहां पर नदामत के परचम तले वो उसी रब की रहमत को मांगा करेंगे। एक और नज्म आपकी समातों की नजर। नज्म का उन्वान है, मेरी राहों के अब तुम मुसाफिर नहीं, तुम जो अनजान राहों में बेनाम लोगों से, दिन के उजाले में रातों के मेलों में, तपती दोपहरी की छाओं के ढेरों में, सावन की झीलों के बहते जजीरों में, तदबीरें मिलने की करते हो यूं, करते हो क्यों, तुमसे मिलना किसी की जरूरत नहीं, तुम किसी के मसीहा कभी भी नहीं, तुम के मगरूर अपनी हकीकत पे हो, तुमको महबूब व माशूक मैंने किया, रेत हस्ती का टीला तभी तो सजा, जब ये टीला सजा मैं बिखर सा गया, तुमने मुझसे कहा तुम कहीं के खुदा, तुम कहाँ के खुदा, चील कव्वों से बदतर वो गिद्ध ठहरे तुम, मेरी सांसों के थमने के मुश्ताक हो, मेरे कदमों की आहट पे हैरान हो, मेरी आहट सुनो अब भी जिंदा हूं मैं,
1: बहुत अच्छा।
0: तुम जो नूरानी चेहरों पे मरते हो यूं, उनके मीठे सुरों में उलझते हो यूं, जाओ अब से तुम्हारे वही रहनुमा, जाओ मैंने तुम्हें कर दिया है विदा, फिर जो सोचो कभी जिंदगी ना मिली, उनकी आवाज में रहबरी ना मिली, झील आंखों में अपनी छवि ना मिली, मेरी चाहत मेरी आजिजी ना मिली, और चाहो कभी इस तरफ लौटना, और चाहो कभी इस तरफ लौटना, मेरी टूटी जबां की यही हो सदा, तुम लरजते रहो आहें भरते रहो, आहें भर भर के मरते रहो, मेरी राहों के अब तुम मुसाफिर नहीं।
1: बहुत खूब।
0: एक नज्म जिसका उन्वान है प्यार का मजार। मोहब्बतों के खेल में मोहब्बतों के देवता ने मुझसे खेल खेल कर हरा दिया संवार कर, मुझे नहीं खबर मिली कि मेरे दिल की आह जो मेरे ही दिल को आ लगी, तो क्यों लगी कहाँ लगी, मुझे मेरे वजूद से जो एक जरा भी प्यार हो, तो फिर इसी वजूद में उसे करूं तलाश क्यों, ये अश्क है मेरे अगर तो मुझसे फिर दगा किए, इसी सनम कदे से यूं है इस तरह फरार क्यों, मैं जानती हूं जो नहीं मैं किस तरह करूं बयां, मैं किस तरह से दूं सदा, ये दिल मेरा है बिक चुका, ये दिल मेरा है बिक चुका, सनम के उस बाजार में जहां से अब वो गुमशुदा है प्यार के मजार में।
1: बहुत
0: उम्दा, बहुत शुक्रिया। एक नज्म जिसका उन्वान है दिले वीरान। समझते क्या हो तुम दिल को, बिलाखिर क्या समझते हो, कभी कहते हो पत्थर है तराशो खूब निखरेगा, कभी शीशा समझते हो जो आंधी ने बिखेरा हो, सियाह वो राज सदियों के इसी दिल में छुपाते हो, कभी मुर्दा सी यादों को भी सीने में दबाते हो, मैं अक्सर फर्ज करती हूँ, मैं अक्सर फर्ज करती हूँ, मैं जो तुमसे अगर कह दूँ कि दिल में कोई बसता है, निगाहों में उतरता है, बहारों में संवरता है, वो दिल को घर बताता है, वो दिल को घर बताता है, वो घर में बुत बनाता है, वो खुद का अक्स चुनता है, वो दिल को चाक करता है, मैं उसकी कारसाजी में खामोशी से तड़पती हूँ, उसे अपना बताने के अमल को फिर झपटती हूँ, दुआ करती हूँ कुदरत से कि जिसने घर बनाया था, जिसे घर का मकी जाना उसे मेहमान कर दे तू, तो कुदरत फिर मेरे हाथों को कुछ औजार देती है, मैं अपने आप ही इस दिल के घर को नोच देती हूँ, तुम्हें मालूम है कितनी मैं अब तकलीफ सहती हूँ कि जब दीवार को घर की मैं खुद ही साफ करती हूँ, मैं अक्सर फर्ज करती हूँ, मैं जो तुमसे अगर कह दूँ कि दिल में अब नहीं कोई, ये दिल बंजर जमी कोई, तो क्या तुम फिर भी आओगे, तो क्या दिल को संवारोगे। बहुत शुक्रिया। हाजरीन, आप मारिया मुजफ्फर से नज़में सुन रहे थे। मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत देती हूँ फहमीना अली साहिबा को।
2: आदाब सामईन, गजल का मतला पेश खिदमत है।
0: इरशाद।
2: मंजिलों का निशा गुलाब।

0: अभी है मंजिलों का निशां गुलाबी है, सुर्ख रह कारवां गुलाबी है। मंजिलों का निशां गुलाबी है, सुर्ख रह कारवां गुलाबी है। आतिशे इश्क जल रही है कहीं, आतिशे इश्क जल रही है कहीं, देखिए तो धुआं गुलाबी है। आतिशे इश्क जल रही है कहीं, देखिए तो धुआं गुलाबी है। वो गुलाबी कहे जो नीले को, वो गुलाबी कहे जो नीले को, मैं भी कह दूंगी हाँ गुलाबी है। मैं भी कह दूंगी हाँ गुलाबी है। साथ रहती है मेरे तन्हाई, साथ रहती है मेरे तन्हाई, फिर भी सारा मकान गुलाबी है। साथ रहती है मेरे तन्हाई, फिर भी सारा मकान गुलाबी है। और शेर है कि कृष्ण का रंग यूं तो काला है, कृष्ण का रंग
1: यूं तो काला है,
0: यूं तो काला है, राधिका के यहाँ गुलाबी है।
1: क्या बात है, क्या कहने।
0: कृष्ण का रंग यूं तो काला है, राधिका के यहाँ गुलाबी है। एक ही बांसुरी है दुनिया में,
1: एक ही
0: बांसुरी है दुनिया में, जिसकी आहो फगां गुलाबी है। एक ही बांसुरी है दुनिया में, जिसकी आहो फगां गुलाबी है। और आखिरी शेर है कि हो लिखी हिजर की सियाही से, हो लिखी हिजर की सियाही से, तो समझ दास्तां गुलाबी है। हो लिखी हिजर की सियाही से, तो समझ दास्तां गुलाबी है। गजल का मतलब है, आते आते करार की हद में, आते आते करार की हद में, आ गए इंतशार की हद में। आते आते करार की हद में, आ गए इंतशार की हद में, चार दिन की बहार की हद में, फूल हैं इख्तसार की हद में। चार दिन की बहार की हद में, फूल हैं इख्तसार की हद में। शेर है कि मेरी कुल जिंदगी सिमट आई, मेरी कुल जिंदगी सिमट आई, एक तेरे इंतजार की हद में। मेरी कुल जिंदगी सिमट आई, एक तेरे इंतजार की हद में। शेर है कि हम मुकम्मल सुरूर थे, लेकिन आ गए हैं खुमार की हद में। हम मुकम्मल सुरूर थे, लेकिन आ गए हैं खुमार की हद में। रहना पड़ता है हर कहानी को, रहना पड़ता है हर कहानी को, एक न एक इन्हिसार की हद में। रहना पड़ता है हर कहानी को, एक न एक इन्हिसार की हद में। और आखिरी शेर है कि कितनी सदियों की बेकरारी है, कितनी सदियों की बेकरारी है, एक पल के करार की हद में। कितनी सदियों की बेकरारी है, एक पल के करार की हद में। अगली गजल का मतला है, जमी मुस्तरद आसमां मुस्तरद, जमी मुस्तरद आसमां मुस्तरद, अगर तू नहीं तो जहां मुस्तरद। जमी मुस्तरद आसमां मुस्तरद, अगर तू नहीं तो जहां मुस्तरद। वही है जमाने की अब तक रविश, वही है जमाने की अब तक रविश, उजाला कबूल और धुआं मुस्तरद। उजाला कबूल और धुआं मुस्तरद। शेर है कि परिंदे के बच्चे कोई खा गया, परिंदे के बच्चे कोई खा गया, शजर मुस्तरद आशियां मुस्तरद, शजर मुस्तरद आशियां मुस्तरद। और शेर है कि जहां शाहजादी को मरना पड़े, जहां शाहजादी को मरना पड़े, कहानी गलत दास्तां मुस्तरद, कहानी गलत दास्तां मुस्तरद। अगर हक बयानी के काबिल नहीं, अगर हक बयानी के काबिल नहीं, जुबान और अहले जुबान मुस्तरद, जुबान और अहले जुबान मुस्तरद। तेरा अनुराग लेकर क्या करेंगे, तेरा अनुराग लेकर क्या करेंगे, किसी का भाग लेकर क्या करेंगे, तेरा अनुराग लेकर

0: क्या करेंगे, किसी का भाग लेकर क्या करेंगे। अभी हम हैं तमन्नाओं के मारे,
1: अभी
0: अभी हम
1: हम हैं
0: हैं
1: तमन्नाओं के
0: तमन्नाओं के
1: मारे।
0: मारे, अभी बैराग लेकर क्या करेंगे।
1: वाह वाह, क्या ख्याल है।
0: अभी हम हैं तमन्नाओं के मारे, अभी बैराग लेकर क्या करेंगे। शेर है कि वो जिनको राजमहलों की है आदत, वो जिनको
1: राजमहलों
0: राजमहलों की
1: की
0: है आदत, विदुर का साग लेकर क्या करेंगे। वो जिनको राजमहलों की है आदत, विदुर का साग लेकर क्या करेंगे। गए सब रंग जब से तुम गए हो, गए सब रंग
1: जब
0: जब
1: से
0: से
1: तुम
0: तुम
1: गए
0: गए
1: हो।
0: हो, भला अब भाग लेकर क्या करेंगे, भला अब भाग लेकर क्या करेंगे। शेर है कि अभी तो रात का पिछला पहर है, अभी तो रात का
1: पिछला
0: पिछला पहर
1: पहर
0: है, तो भैरव राग लेकर क्या करेंगे,
1: है।
0: तो भैरव राग लेकर क्या करेंगे। शेर है कि अभी तो हाथ में रोटी नहीं है, अभी तो हाथ में रोटी नहीं है, तो माखन काग लेकर क्या करेंगे, तो माखन काग लेकर क्या करेंगे। और आखिरी शेर है कि हमारा भाग ही अपना नहीं है, हमारा भाग ही अपना नहीं है, तुम्हारा भाग लेकर क्या करेंगे। हमारा भाग ही अपना नहीं है, तुम्हारा भाग लेकर क्या करेंगे।
1: बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया
1: सामीन। ये थी फहमीना अली साहिबा। अब आप मरियम मुख्तार साहिबा से चंद गज़लें सुनिए।
2: आदाब सामीन, गज़ल का मतलब पेश खिदमत है।
0: इशार
2: ऐशो आराम ये राहत नहीं देखी जाती, ऐशो आराम ये राहत नहीं देखी जाती, मुझसे दुनिया में ही जन्नत नहीं देखी
1: वाह
2: जाती।
1: वाह वाह,
2: गर्दिशे वक्त ने कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं, गर्दिशे वक्त ने कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं, आईने से मेरी सूरत नहीं देखी जाती। अगर न चाहो तो ना आने के बहाने हैं बहुत, अगर न चाहो तो ना आने के बहाने हैं बहुत, वरना चाहो तो ये फुर्सत नहीं देखी जाती। अपने जलवों को हिजाबों में छुपा रहने दो, अपने जलवों को हिजाबों में छुपा रहने दो, वक्त से कब्ल कयामत नहीं देखी जाती, वक्त से कब्ल कयामत नहीं देखी जाती। और हम तेरी बज्म से हर बार चले आते हैं, हम तेरी बज्म से हर बार चले आते हैं, अब तेरी बज्म की हालत नहीं देखी जाती। अब उससे कह दो कि चला आए वो घर लौट के, अब उससे कह दो कि चला आए वो घर लौट के, अब दरो दीवार की वहशत नहीं देखी जाती। और इख्तियारात मुझे दे कि मैं दामन भर दूं, इख्तियारात मुझे दे कि मैं दामन भर दूं, मांगने वाले की हाजत नहीं देखी जाती। एक और गजल, कोई शिकवा न शिकायत न गिला कुछ भी नहीं, कोई शिकवा न शिकायत न गिला कुछ भी नहीं, इसका मतलब है ताल्लुक में बचा कुछ भी नहीं,
1: क्या बात है,
2: इसका मतलब है ताल्लुक में बचा कुछ भी नहीं। और उसमें क्या बात थी एक उसके चले जाने से, उसमें क्या बात थी एक उसके चले जाने से, यूं तो सब कुछ है मगर फिर भी रहा कुछ भी नहीं। और हम समझते थे कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, हम समझते थे कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, दोनों हैरत में हैं, दोनों को हुआ कुछ भी नहीं। और उसके जाने से तो गोया मेरी बीनाई गई, उसके जाने से तो गोया मेरी बीनाई गई, देखना चाहा बहुत मुझको दिखा कुछ भी नहीं। और तीन हरफों से बने इश्क ने वो हाल किया, तीन हरफों से बने इश्क ने वो हाल किया, ऐसा लगता है वफा और जफा कुछ भी नहीं। और इतनी तेजी से बदलता है मेरे यार का रंग,
1: इतनी तेजी से बदलता है मेरे यार
2: इतनी तेजी से बदलता है मेरे यार का रंग, उसके आगे तो ये मौसम की अदा कुछ भी नहीं। इतनी तेजी से बदलता है मेरे यार का रंग, उसके आगे तो ये मौसम की अदा कुछ भी नहीं। एक और मतला अर्ज है,
1: इशाद
2: उसके कदमों में मेरी जान नहीं होना था, उसके कदमों में मेरी जान नहीं होना था, तुझे

0: इतना भी पशेमान नहीं होना था। और आपके चाहने वालों को बुरा लगता है, आपके चाहने वालों को बुरा लगता है, आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं होना था। और चाहता जो भी है आता है चला जाता है, चाहता जो भी है आता है चला जाता है, दिल को यूं खेल का मैदान नहीं होना था। चाहता जो भी है आता है चला जाता है, दिल को यूं खेल का मैदान नहीं होना था। और जिसको देखो यहाँ हाथों में लिए फिरता है, जिसको देखो यहाँ हाथों में लिए फिरता है, इश्क इतना तुझे आसान नहीं होना था। और दफअतन पेश जुदाई का सबब आता कोई, दफअतन पेश जुदाई का सबब आता कोई, यूं बिछड़ जाने का इम्कान नहीं होना था। और जज्बे इश्क पे ईमान वो लाता क्यों कर, जज्बे इश्क पे ईमान वो लाता क्यों कर, आखिर उस बुत को मुसलमान नहीं होना था। और आखिरी शेर है कि वादिये दिल में जरो जान की कीमत क्या है, वादिये दिल में जरो जान की कीमत क्या है, इज्जत नफ्स का नुकसान नहीं होना था। बहुत शुक्रिया। एक और गजल पेश करती हूँ। मतला अर्ज किया है कि जात से मेरी उसे प्यार भी हो सकता है, जात से मेरी उसे प्यार भी हो सकता है, मेरा दुश्मन मेरा गमखार भी हो सकता है, मेरी खामोशी को इकरार समझने वालों, मेरी खामोशी को इकरार समझने वालों, इसमें एक जाविया इनकार भी हो सकता है। और मैं अगर रूठ भी जाऊं तो खफा मत होना, मैं अगर रूठ भी जाऊं तो खफा मत होना, ये मेरे प्यार का इजहार भी हो सकता है, ये मेरे प्यार का इजहार भी हो सकता है। और झूठ का राज है सच बोलने वालों सुन लो, झूठ का राज है सच बोलने वालों सुन लो, सर बचाना यहाँ दुश्वार भी हो सकता है। और तू मसीहाए जमाना है यकीनन, लेकिन तू मसीहाए जमाना है यकीनन, लेकिन तेरी खातिर कोई बीमार भी हो सकता है, तेरी खातिर कोई बीमार भी हो सकता है। और इश्क को खेल समझती है ये दुनिया तो सुनो, इश्क को खेल समझती है ये दुनिया तो सुनो, ये तमाशा सरे बाजार भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे बज़्म ख्वातीन के तहत ये मुशायरा। शुराका थीं मोहतरमा फरहीन शकील, मोहतरमा फहमीना अली, मोहतरमा मरियम मुख्तार, और निज़ामत के फ़रायज़ अंजाम दे रही थीं मोहतरमा मारिया मुजफ्फर। तो सामीन, हमें यकीन है कि आप इस मुशायरे से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
2: अभी आप उर्दू मजलिस कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4 बजने को है वापस समाचार।

0: खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज इस पूरे ही कार्यक्रम में मेरे साथ रहेंगी मेरी साथी।
3: मैं हूं रेणु गुप्ता और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: तो मैं और रेणु आज आपको लेकर चलेंगे खेल की सभी खबरों के उस सफर पर जिनके साथ आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं। और खेल के इस सफर को सबसे पहले हम शुरू करेंगे फीफा के सफर से, क्योंकि खेलों का सबसे बड़ा, अगर फुटबॉल का कहें जैसे हम, और खेलों के लिए हम कहते हैं कि एक महाकुंभ होता है वो है ओलंपिक, वैसे ही फीफा का महाकुंभ यानी फुटबॉल का महाकुंभ है फीफा, और जिसमें बचे हैं सिर्फ कुछ ही दिन का समय। तो जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फुटबॉल जो है उसका वर्ल्ड कप हमें देखने को मिलेगा, और बहुत सारे उलट फेर इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में होने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फीफा के वर्ल्ड कप के इस शानदार सफर पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दो ग्रुप्स की। वो ग्रुप्स कौन से हैं, आइए सुनते हैं। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 का आगाज 11 जून 2026 से होने जा रहा है। इस बार विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार 48 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होने वाला ये टूर्नामेंट पहले से कहीं बड़ा, भव्य और प्रतिस्पर्धी होने वाला है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम नजर डालेंगे दो बेहद दिलचस्प समूहों में, ग्रुप आई और ग्रुप जे। इन दोनों समूहों में विश्व चैंपियनों का अनुभव है, उभरती हुई ताकतें हैं और ऐसे देश भी हैं जो इतिहास रचने के सपने के साथ मैदान में उतर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप आई की। इसमें शामिल है फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे और इराक की टीम। ये शुरुआती दौर का सबसे रोमांचक समूह है, जिसमें दिग्गज दावेदार फ्रांस और असाधारण रूप से मजबूत सेनेगल के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ये समूह सिर्फ दो टीमों की प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक है, क्योंकि एक बेहद खतरनाक नॉर्वे टीम विश्व स्तरीय आक्रमण क्षमता के साथ मैदान में उतर रही है, जो किसी भी रक्षात्मक चूक का फायदा उठा सकती है। वहीं इराक भी सेम खेल स्प्रिट के साथ मैदान में उतर रहा है। ग्रुप आई

0: में दिग्गज खिलाड़ियों, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिभाओं को परिभाषित करने वाले आक्रमणकारी खिलाड़ियों और रणनीतिक दृढ़ता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। फ्रांस, जिसके पास बेहद मजबूत और अनुभवी खिलाड़ियों की टीम है, डीडीएन के कुशल मार्गदर्शन में फ्रांसीसी टीम ने क्वालिफाइंग अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तरी अमेरिका में आसानी से अपनी जगह पक्की कर ली। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलन है और मजबूत रक्षा पंक्ति। तो दूसरी ओर ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, चाहे धैर्य के साथ खेलना हो या फिर बिजली की गति से पलटवार करना। फ्रांस हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखता है, यही वजह है कि उसे समूह की सबसे प्रतिभाशाली टीम माना जा रहा है। बात करते हैं सेनेगल की। टेरांगा के शेरों के कंधों पर पूरे महाद्वीप का भार है। अनुभवी और सितारों से सजी ये टीम अफ्रीका के इतिहास में विश्व कप ट्रॉफी जीतने का सबसे बेहतरीन मौका है। अब सेनेगल सिर्फ क्वालिफाई करने वाली टीम नहीं, बल्कि उसके पास यूरोपीय क्लबों का शानदार अनुभव और अपार शारीरिक शक्ति का सही संतुलन है। सेनेगल की टीम एक बेहद डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट मानी जाती है। उनकी स्ट्रेटेजी पहले विपक्षी टीम के खेल को रोकने और फिर तेज काउंटर अटैक के जरिए मौके बनाने की होती है। डिफेंस, मिडफील्ड और अटैक तीनों विभागों में टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम में शानदार डेप्थ, कॉन्फिडेंस और विनिंग माइंडसेट देखने को मिलता है। यही वजह है कि सेनेगल को इस विश्व कप में एक स्ट्रांग कंटेंडर माना जा रहा है, जो किसी भी टीम को कड़ी टक्कर दे सकता है। बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे ने एक पीढ़ी के लंबे टूर्नामेंट के सूखे को खत्म करते हुए वैश्विक मंच पर एक बेहद रोमांचक और आधुनिक टीम को पेश किया है। नॉर्वे ने एक कठिन यूरोपियन क्वालिफायर से होकर विश्व कप में जगह बनाई है और यही वजह है कि उसे इस ग्रुप का डार्क हॉर्स माना जा रहा है। भले ही उसकी डिफेंस को फ्रांस और सेनेगल जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ कड़ी परीक्षा देनी पड़े, लेकिन उसकी अटैकिंग लाइन किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखती है। नॉर्वे की सबसे बड़ी ताकत है उसका टेक्निकल मिडफील्ड और तेज अटैकिंग फुटबॉल। टीम छोटे और सटीक पासों के जरिए खेल पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही अपने स्ट्राइकर को गेंद पहुंचाकर विपक्षी रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाती है। अगर नॉर्वे अपनी लय में आ जाए तो ये टीम इस ग्रुप में सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है। बात करते हैं इस ग्रुप के लास्ट टीम की, इराक। मेसोपोटामिया के शेर उत्तरी अमेरिका में अप्रत्याशित जीत हासिल करने वाले एक शक्तिशाली देश के रूप में पहुंचे हैं। एक रोमांचक प्लेऑफ मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद इराक विश्व मंच पर वापसी कर रहा है, जहां उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। ग्रुप का असली धमाका फ्रांस और नॉर्वे के बीच होने वाला आखिरी मैच है। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद के दौर में किलियन मम्बाप्पे और एर्लिंग हॉलैंड की प्रतिद्वंद्विता फुटबॉल जगत की सबसे बड़ी सनसनी मानी जाती थी। भले ही ये रोमांच अब कम है, लेकिन ये मैच इन दोनों वैश्विक दिग्गजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार आमने सामने लाएगा। अब बात ग्रुप जे की। इस ग्रुप में शामिल है मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और विश्व कप में पहली बार पहुंची जॉर्डन की टीम। सभी की नजरें स्वाभाविक रूप से अर्जेंटीना पर होंगी। 2022 में विश्व कप जीतने वाली टीम का बड़ा हिस्सा अब भी टीम के साथ है और सबसे बड़ी बात, फुटबॉल के महानायक लियोनेल मेसी अपने रिकॉर्ड छठे विश्व कप में उतरने जा रहे हैं। 38 वर्ष की उम्र में भी मेसी दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों का केंद्र बने हुए हैं। अर्जेंटीना की टीम अनुभव, आत्मविश्वास और जीत की आदत के साथ इस विश्व कप में प्रवेश कर रही है। लेकिन ग्रुप जे केवल अर्जेंटीना की कहानी नहीं है। अल्जीरिया 12 वर्षों के बाद विश्व कप में वापसी कर रहा है। कप्तान रियाद महरेज के नेतृत्व में टीम के पास अनुभव और प्रतिभा दोनों मौजूद हैं। उनकी आक्रमण शैली बेहद विविध है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर अल्जीरिया अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करता है तो वो किसी भी प्रतिद्वंदी को मुश्किल में डाल सकता है। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया भी 28 साल बाद विश्व कप में लौटा है। जर्मन कोच राल्फ रंगनिक के मार्गदर्शन में ये टीम तेज आक्रमण और संगठित फुटबॉल खेलती है। और अब बात उस टीम की जो इस समूह की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक कहानी है, जॉर्डन। कई असफल प्रयासों के बाद जॉर्डन ने पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। पूरे देश के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जॉर्डन के खिलाड़ी जानते हैं कि दुनिया उन्हें अंडरडॉग मान रही है, लेकिन यही स्थिति उन्हें अतिरिक्त प्रेरणा देती है। वो इस मंच पर अपनी पहचान बनाने और इतिहास लिखने के इरादे से उतरेंगे। ग्रुप जे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ हमें अनुभव और सपनों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। एक ओर मेसी और अर्जेंटीना का विजयी इतिहास है तो दूसरी ओर जॉर्डन जैसी टीम का पहला विश्व कप का सपना। तो कुल मिलाकर ग्रुप आई और जे दोनों ही रोमांच से भरपूर दिखाई देते हैं। कहीं विश्व चैंपियन अपनी बादशाहत बचाने की कोशिश करेंगे तो कई नई टीमें दुनिया को चौंकाने का प्रयास करेंगी। अगले कुछ ही दिनों में दुनिया की निगाहें इन मैदानों पर होंगी। इसका जवाब तो सिर्फ मैदान पर ही मिलेगा। तो बिल्कुल इस फुटबॉल के ग्राउंड में कौन होगा विजेता, कौन किसको देगा चकमा, ये तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। रेनू, वैसे एक बात बताओ, आजकल तुम ना बहुत फिट लग रही हो, क्या कर रही हो अपनी फिटनेस के लिए? कहीं तुमने भी किसी स्पोर्ट्स को तो नहीं ज्वाइन कर लिया?
1: कविता, अगर मैं अपनी फिटनेस की बात करूं तो योगा इज माय ऑलवेज गो टू वर्कआउट। मतलब योगा एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ आपको फिजिकली बल्कि आपको इमोशनली और एक मेंटली स्टेबिलिटी भी देती है।
0: तो मतलब आप योगा करती हैं रेगुलर?
1: जी हाँ, बिल्कुल रेगुलर मैं योगा करती हूँ। और कविता, आपको पता होगा कि भारत में अभी पहली योगासन चैंपियनशिप भी हुई है, जिसकी मेजबानी भारत ने ही की है और भारत ने ही उसको जीता भी है।
0: जी हाँ, बिल्कुल मुझे इस बात का पता है और मुझे बहुत प्राउड होता है ये सोचकर कि जो योग है वो भारत की सबसे प्राचीन विधा है और इस विधा में भारत के पास काफी सारे धुरंधर योगाचार्य ऐसे थे और उसके बाद योग जो है वो एक फिटनेस के तौर पर और उसके बाद वो खेलों के रूप में जो है पहचाना जा रहा है। तो उन सभी बच्चों को, उन सभी खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो योग करते हैं और योग के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो ये जो पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी रेनू, इसकी मेजबानी भारत ने की जैसे आपने बताया और इसमें इंडिया ने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आप ही बताइए।
1: बिल्कुल कविता, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि भारत की वह अमूल्य धरोहर है जिसने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य संतुलन और आत्मिक शांति का संदेश दिया है। और अब यही योगासन वैश्विक खेल मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। अहमदाबाद के ईकेए अरेना में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 5 दिनों तक चली इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से 31 देशों के खिलाड़ियों ने कम से कम एक पदक जीता जबकि 10 देशों ने स्वर्ण पदक हासिल करने में सफलता प्राप्त की। मेजबान भारत ने प्रतियोगिता में 122 सदस्यीय दल उतारा और भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू से लेकर अंत तक अपना दबदबा कायम रखा। परिणाम स्वरूप भारत ने कुल 114 पदक जीतकर प्रतियोगिता का समापन किया जिनमें रिकॉर्ड 102 स्वर्ण पदक शामिल रहे। पदक तालिका में जापान दूसरे स्थान पर रहा। जापानी खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। तीसरे स्थान पर रहा अर्जेंटीना, जिसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बनी उनकी एकमात्र प्रतिनिधि नाबिला बर्राजा। बर्राजा ने अकेले 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर अपनी टीम को शीर्ष 3 देशों में पहुंचा दिया। वह प्रतियोगिता की सबसे सफल एथलीट भी रही। हालांकि पदक तालिका में नेपाल 5वें स्थान पर रहा लेकिन कुल पदकों की संख्या के आधार पर भारत के बाद दूसरा सबसे सफल देश साबित हुआ। नेपाल ने 1 स्वर्ण 36 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 52 पदक अपने नाम किए। उज्बेकिस्तान ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 13 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल 25 पदक अपने नाम किए। दोस्तों, ये प्रतियोगिता केवल पदकों की लड़ाई नहीं थी बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के संगम का भी शानदार उदाहरण बनी। दुनिया भर से आए खिलाड़ियों ने भारतीय संस्कृति, योग की परंपरा और भारत की मेहमान नवाजी का अनुभव किया। विश्व योगासन के अध्यक्ष योगश्री स्वामी रामदेव जी ने भी अपने वीडियो संदेश में कहा कि विश्व योगासन चैंपियनशिप कोई मंजिल नहीं बल्कि एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जो स्वास्थ्य, सामंजस्य, शांति और मानव एकता का मार्ग दिखाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ से शुरू हुई ये यात्रा एक दिन योगासन को ओलंपिक मंच तक पहुँचाएगी। आर्मेनिया की खिलाड़ी सोना सोंघायन, जिन्होंने 3 वर्ष पहले अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान योग को अपनाया था, इस आयोजन से बेहद प्रभावित नजर आई। उन्होंने कहा कि भारत की अपनी पहली यात्रा से वे अनेक सुखद यादें लेकर जा रही हैं और अपने देश लौटकर योग के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी। अब कविता, बात करते हैं कुछ मुख्य परिणामों
0: की। बिल्कुल,
1: तो इसमें अगर हम बात करें तो आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा के सब जूनियर महिला वर्ग में भारत की इशिका गुच्छेत और ईशानवी की जोड़ी ने 90.89 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। जाम्बिया की निया विजय वर्गीय और आरहुई लोखंडे को रजत तथा जापान की रेंका आओकी और इचिका शिमुजी को कांस्य पदक मिला। जूनियर महिला वर्ग में भारत की दीपा लोढ़ी और सीमा नियोपाने ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नेपाल और जाम्बिया की जोड़ियों ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। जूनियर पुरुष वर्ग में अगर बात करें तो भारत के आयुष भौमिक और ओम देहंकर की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं रिदमिक पेयर सीनियर महिला वर्ग में भारत की इंदु माठूरिया और देवी ने स्वर्ण पदक जीता। उज्बेकिस्तान को रजत पदक जबकि श्रीलंका और ओमान की जोड़ियों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक प्रदान किया गया। लेग बैलेंस इंडिविजुअल सब जूनियर महिला वर्ग में भारत की शालिनी डेने ने स्वर्ण पदक जीता। हैंड बैलेंस इंडिविजुअल सब जूनियर पुरुष वर्ग में भारत के अर्थव सिंह नेगी स्वर्ण पदक विजेता बने, जबकि सीनियर महिला वर्ग में शिल्पा दास ने भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जोड़ा। बैकबेंड इंडिविजुअल स्पर्धा की अगर हम बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। सब जूनियर पुरुष वर्ग में गोकर्ण शर्मा, सब जूनियर महिला वर्ग में ऋषा शेट्टी, जूनियर पुरुष वर्ग में राज काजोल और जूनियर महिला वर्ग में अनिका राणा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।
0: जी बिल्कुल, और ये जिस तरह से हमारे जो प्लेयर्स हैं, अगर हम मेडल की बात करें तो अंतर तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इंडिया ने टोटल 114 पदक है वो जीते हैं, तो उसके तो दूर दूर तक अभी कोई कंट्री नहीं। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में योग को कितना पसंद किया जाता है।
1: भारत निसंदेह जो है वो योग गुरु है।
0: बिल्कुल, और इसी विषय में, क्योंकि ये पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, अब आगे के लिए क्या कुछ संभावना है इस चैंपियनशिप में, हमने बात की है उदित सेठ से जो कि प्रेसिडेंट है योगासन भारत के, क्या कहना है उनका लीजिए सुनिए।
2: चैंपियनशिप जो हमने करी है हिस्ट्री बना रही है, मतलब कि जगत में पहली बार ये स्तर पर योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है पहली बार। और मेरा सौभाग्य है कि हम ये चैंपियनशिप हमने अहमदाबाद के हेरिटेज सिटी में एका अरीना में करी, जो इंडिया का पहला पीपीपी प्रोजेक्ट था। चैंपियनशिप में लगभग 75+ कंट्रीज आए थे, एग्जैक्टली 78, और 550 से ज्यादा एथलीट्स आए थे। ये जो चैंपियनशिप यहाँ पे हुई थी मैडम, हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल चैंपियनशिप हुई थी। बहुत सफलता से हमने इसको एग्जीक्यूट

0: कटिंग को लगाएंगे, वहाँ हम ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर पानी का प्रबंधन अच्छा हो, पानी रुके नहीं और पानी की कमी भी ना हो। तो हम जो है कटिंग लगाते हैं जनरली शेड नेट स्ट्रक्चर्स में लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पास मिस्टर्स की फैसिलिटी होती है। अगर मिस्टर नहीं भी है तो भी हमें इन्हें टाइम टू टाइम जो पानी है वो देखते रहना है कि पानी की अधिकता भी ना हो और कमी भी ना हो।
1: जी हम डॉक्टर रितु जैन इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे।
0: जी
1: बहुत महत्वपूर्ण है ये, और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार
2: मैम, मैं गोपाल बोल रहा हूँ मैम, बागपत से।
1: अच्छा जी बताएं।
2: मैम दो सवाल है छोटे छोटे बहुत।
1: अच्छा जी पूछिए।
2: मैम ये तो कड़ी पत्ते के बारे में मैम, तो
1: कड़ी पत्ते में क्या मुश्किल है?
2: मैम कड़ी पत्ते ये है, कड़ी पत्ता है हमारे अच्छा भाव हो यार, लेकिन मैम उसके पत्ते अब मैम जुलूस रहे हैं, गिर रहे हैं। और
1: जी
2: मैम
1: जी
2: दूसरा सवाल मैम, पहाड़ी पालक है एक,
1: क्या दूसरा सवाल क्या है आपका?
2: मैम पहाड़ी पालक है, पहाड़ी पालक
1: पहाड़ी पालक।
2: जी, तो मैम उसके पत्ते बढ़ ना रहे, जाने कहाँ रह रहे हैं मैम, बढ़ नहीं रहे हैं पत्ते।
1: अच्छा बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है।
3: गोपाल जी, जो पहला सवाल आपका है कि कढ़ी पत्ते के पौधे के जो पत्ते हैं, पत्ते का आकार जो है कि छोटा हो रहा है, तो इसमें जैसे हम लोग शुरुआती दौर में ही बोले कि तापमान जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये देखेंगे कि मानसून जैसे जून के महीने में आ जाएगा तो जो पत्ते का आकार है वो जो है कि बड़ा हो जाएगा, और जो रंग भी उसका जो है डल कलर इस टाइम दिख रहा है, ग्रीन नहीं है, वो भी हो जाएगा। दोनों चीजें जो है कि वातावरण से बनी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, और इसमें आप नमी बना करके पौधे का जो है कि थाला बनाइए, और थाले बना करके उसमें नमी बना करके रखिए जो है, और इंतजार कीजिए जैसे मानसून आएगा इसके पत्ते का आकार बड़ा हो जाएगा। सेम चीज यही कहूंगा पहाड़ी पालक के लिए भी, ये भी तापमान से जो है कि बिल्कुल ही रिलेटेड है, और इसमें भी नमी बना करके रखें। अब मानसून आने पे दोनों जो आपको चीजें दिख रही हैं कड़ी पत्ते में और पहाड़ी पालक में, दोनों में जो है कि समस्या का समाधान हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल सही बात है, हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, और बार बार हम यही कह रहे हैं कि अपने पौधों में हम नमी बनाए रखें। और डॉक्टर रितु जैन, चर्चा चल रही थी कि कैसे गुलदाउदी की कटिंग से हम प्रवर्धन कर सकते हैं इस समय जो लोग व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं।
0: जी तो जैसे मैंने बताया आपको कि मदर प्लांट से शीर्ष नोचन करके ऊपर वाली जो कटिंग है, कोमल कोमल कटिंग है, 4-5 इंच तक की कटिंग आपको तोड़ लेनी है, और तोड़ने के बाद उसे हमें इमीडिएटली, एक तो पहले तोड़ने के बाद उसको छाया वाली जगह पे रखना है। ये ध्यान रखना है हमें कि ज़्यादा तापमान ना हो, क्योंकि अधिक तापमान वाली जगह पे रखेंगे तो कटिंग खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हम कटिंग को छाया वाली जगह पे रखेंगे, किसी गीले कपड़े में रखेंगे, और उसके बाद जो हमारा मीडिया है उसको हम पहले से ही तैयार करके रखेंगे। तो मीडिया के लिए हम रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास आर्टिफिशियल मीडिया है जैसे कोकोपीट पर लाइट और

0: लाइट है वो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं
1: मैं आपको फिर रोकना चाहूंगी,
0: जी।
1: माफी चाहती हूँ। हेलो हेलो
2: नमस्ते मैम,
1: जी, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है?
2: अशोक कुमार शर्मा, बुलंदशहर।
1: अच्छा अशोक जी, पूछिएगा।
2: मेरा सवाल मैम ये है, सूरजमुखी लगा रखी
1: जी, सूरजमुखी लगा रखी है आपने जी।
2: तो उनके फूल बड़े आते तो काफी, लेकिन छोटे हैं।
1: अच्छा जी,
2: और दूसरा मेरा सवाल ये है, इंग्लिश गुलाब है ये तंदुरुस्त है, लेकिन उनके
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक।
3: दूसरा
2: सवाल मेरा ये, इंग्लिश
1: कि इंग्लिश गुलाब
2: गुलाब
1: है।
2: उनपे
3: ठीक है, ठीक है। अशोक जी, दोनों सवाल मुझे समझ में आ गया है
1: जी
3: कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सनफ्लावर आपने लगाया है उसमें फ्लावर का साइज जो है कि छोटा आ रहा है, और जो इंग्लिश गुलाब आपने लगाया है उसमें फ्लावरिंग नहीं कर रहा है जो है। तो देखिए, सनफ्लावर्स हम लोग स्टार्टिंग प्रोग्राम से ही ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जब अधिक होगा तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फ्लावर का साइज होता है वो छोटा हो जाता है जो है। तो यही सेम चीज जो है कि सनफ्लावर्स के अंदर भी हो रहा है, तापमान अधिक होने के कारण जो है उसके फ्लावर का आकार छोटा हो रहा है। दूसरा जो इंग्लिश गुलाब है, इंग्लिश गुलाब में इस टाइम पे कहीं कहीं आपको जो है कि छोटे छोटे आकार के फ्लावर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एक आकार नहीं होगा। इसमें ये देखा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में जो नवंबर दिसंबर से फ्लावरिंग शुरू होती है उसमें रेगुलर आपको फ्लावर्स मिलेगा, फ्लावर
1: जी
3: का आकार भी बड़ा होगा। तो
1: जी
3: अभी सुझाव ये है कि गुलाब के पौधों को आप जो है किस तरीके से हेल्दी रखें, हेल्दी रखने के लिए सही समय पे उस पर पानी आप देते रहें, और कीड़े मकोड़े से जो है कि उनका बचाव रखना है जो है।
1: जी
3: और सनफ्लावर्स में भी नमी बना करके रखेंगे, जैसे तापमान थोड़ा सा कम होगा तो जो नई कली आएगी उसके फ्लावर का साइज थोड़ा डिफिनेटली जो वर्तमान जो फ्लावर साइज है उससे बड़ा हो जाएगा
1: जी जी जी
3: जी।
1: जी और हम चर्चा कर रहे थे ऋतु जैन मैम
0: जी
1: की, जो भी था आपने कटिंग भी ले ली, उसका उपचार भी
0: जी
1: कर लिया
0: कटिंग उपचार करने के बाद उसको
1: जी
0: हम मीडिया में लगा देंगे और साथ
1: जी
0: ही साथ हम उसमें पानी दे देंगे।
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: हम जो पानी देने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि एक तो छाया हो उस स्थान पे,
1: अच्छा
0: डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए, और
1: जी
0: दूसरा पानी का प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गुलदाउदी है वो पानी के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील है, थोड़ा सा भी ज़्यादा सहनशील नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा भी पानी अगर ज़्यादा डल गया तो वो जल्दी मर जाता है। तो इसलिए
1: हाँ
0: पानी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये भी क्योंकि कटिंग बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मुलायम है, क्योंकि ऊपरी भाग से हमने पौधे के लिए है,
1: लिया
0: तो उसको जो समय समय पे पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। तो इसके लिए या तो हम शेड नेट बना सकते हैं, कमर्शियल तौर पे जिन्होंने करना है वो जो शेड नेट है उसमें मिस्टर लगाए हों और वहां पर इनको लगा सकते हैं कटिंग को, और कम से कम 25 से 30 दिन के अंदर अंदर कटिंग में जो जड़ है वो अपनी जड़ पकड़ लेती है, और 30 दिन के बाद आप इसको खेत में परिवर्तित कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: अब खेत की क्या तैयारी करनी है
0: जी, खेत की तैयारी करना, ये बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने, बहुत ही अच्छा
1: जी
0: सवाल है नीलम जी। देखिए, जहाँ हम कटिंग की तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ हमें खेत की भी तैयारी करनी पड़ेगी। खेत की तैयारी के लिए इस समय ये है कि हम खेत में ढेंचा जैसी कुछ जो फसलें हैं जो
1: हाँ
0: उनको उगा दें, ताकि जो बायो फर्टिलाइजर है वो
1: हाँ
0: हमारे खेत को मिल जाए, हमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता ना पड़े, तो ऑर्गेनिक मेन्योरिंग जिससे हो जाए। तो इस टाइम खेत को जोत कर उसमें ढेंचे का सीड डाल दिया जाए और ढेंचे को उगने दिया जाए,
1: जी
0: और जब ढेंचा उग जाएगा तो उसके बाद उसको दोबारा से ट्रैक्टर चलाकर खेत में ही मिला दिया जाए, ताकि
1: हाँ
0: जो जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो खेत में आ जाए,
1: जी
0: और उसके बाद जो है आप खेत की 2-3 जुताई करके खेत की तैयारी कर सकते हैं।
1: जी तो मतलब उसके बाद जो आप 20-25 दिनों के बाद वो जो कटिंग तैयार हो गई है उसकी जड़ें वो रोप सकते हैं फिर
0: जी जी
1: वो।
0: जी जी वो कटिंग जो है रूटेड कटिंग उसे बोलते हैं,
1: जी
0: उसको हम रोप सकते हैं, और उसके लिए जो है हम रेज्ड बेड
1: हाँ
0: बनाएंगे, ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएंगे, क्योंकि गुलदाउदी में जैसे मैंने आपको बताया पानी नहीं भरना चाहिए, पानी भरता है तो गुलदाउदी सड़ जाते हैं।

0: जी, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि जो भी गुलदाउदी की वाणिज्यिक खेती करते हैं, व्यावसायिक खेती करते हैं, उनके लिए जानकारी बहुत उपयोगी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक प्रश्न आया था गुलाब का, और आपने कहा था कीट मकोड़ों से भी, रोगों से इस समय गुलाब को बचाना चाहिए। तो फिर
1: बिल्कुल।
0: क्या मतलब, आप जो व्यावसायिक खेती करते हैं, क्या आप सुझाव देंगे उनके लिए?
1: इस टाइम पे देखें तो गुलाब में सबसे अधिक कीड़े में यह समस्या आती है तो लाल मकड़ी की समस्या आती है जो है, और लाल मकड़ी के कारण जो है कि ये देखेंगे तो गुलाब के जो बाग हैं या व्यवसायिक खेती करने के जो खेत हैं, चाहे ग्रीन हाउस में हो चाहे खुले खेतों में हो,
0: जी
1: जब तापमान बढ़ता है और नमी कम होती है तो उस टाइम पे लाल मकड़ी का प्रकोप हो जाता है। इसका
0: जी
1: सबसे बड़ी पहचान होती है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: लाल मकड़ी जिस पत्ते के ऊपर या पौधों के ऊपर अटैक करता है, वो पत्तियों से जो क्लोरोफिल जो हरा भाग है उसके रस को चूस लेता है, फिर धीरे धीरे पत्तियां जो है कि सफेद दिखने लगती हैं।
0: जी
1: और
0: जी
1: जब मकड़ी का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है तब उसके ऊपर जाला सा बन जाता है। तो हमें इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ तरीके हैं। पहले तो जो है कि यदि स्प्रिंकलर सिस्टम हो तो
0: जी
1: उससे यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो पत्तियों पे जो है जब नमी जाती है तो उसके जो अंडे होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं जो है, तो उससे एक पॉपुलेशन इनका कम हो जाता है।
0: जी
1: दूसरा जो है कि होता है कि इसमें आप एक्रीसाइट जो लाल मकड़ी को मारने के लिए जो दवा है मार्केट में उसका हम छिड़काव करते हैं। उसमें मार्केट में जो है कि कई नामों से दवा मिलती है, जैसे हिलफोल है, डाइकोफोल है, ओमाइट है, सल्फर की डस्टिंग है, इन
0: जी
1: सबके जो है डोज जो है कि अलग अलग हैं जो है। जैसे हिलफोल या डाइकोफोल की बात करते हैं तो 1 ml 1 लीटर पानी में पड़ना चाहिए। इसका
0: जी
1: मतलब 15 लीटर की जो टंकी है स्प्रे करने का उसमें 15 लीटर दवा पड़ना चाहिए जो है, और उसको अच्छी तरह से मिला लें। अब मिलाने के बाद जो है कि पौधे के ऊपरे पत्ती के ऊपरी सतह पे तो छिड़काव करें ही, लेकिन उसका गन ऐसा होना चाहिए कि जो पत्ती के नीचे भी दवा जाए, क्योंकि मकड़ी तो नीचे है पत्ते के जो है,
0: हाँ हाँ
1: यदि नीचे
0: हाँ
1: दवा पत्ती के निचले सतह पे नहीं जाएगी तो मकड़ी मरेगी नहीं जो है। और जो दूसरी दवा मैं बताया ओमाइट, ओमाइट जो है 15 लीटर पानी में जो है 5 ml हम डालते हैं जो है, उससे भी जो है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यदि माइट का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाता कि एक छिड़काव से माइट को कंट्रोल किया जा सके जो है,
0: जी
1: कम से कम 2 से 3 छिड़काव की जरूरत होती है, और एक छिड़काव से दूसरे छिड़काव के बीच का जो अंतराल हो कम से कम 2 सप्ताह का अंतराल, 14 से 15 दिन का अंतराल होना चाहिए। और दवा को यदि इस बार आपने कोई और दवा किया है तो दूसरी बार जो दवा करें वो दूसरी जो है कि एक्रीसाइट जो कंपनी की हो, केमिकल कंपाउंड दूसरा हो, उसका यदि इस्तेमाल करते हैं तो उस कीड़े में जो है कि इस दवा के प्रति जो है कि सहन शक्ति जो है होती है वो पैदा नहीं हो पाएगी, और वो मारने का एक अच्छा तरीका होता है। केवल इसी के लिए ही नहीं, चाहे आप इंसेक्ट इंसेक्ट को मार रहे हो, फंगस को मार रहे हो, बैक्टीरिया को मार रहे हो,
0: जी
1: दवा चेंज कर करके जरूर करना चाहिए।
0: जी जी
1: जी
0: जी जी
1: जी
0: मतलब पहले तो जरूरी है कि जो हमारे बागवान भाई हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो सजग रहें, सचेत
1: बिल्कुल
0: रहें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: निरंतर देखते रहें,
1: बिल्कुल
0: ताकि अगर वो निरंतर देखते रहेंगे, अगर थोड़ा सा ही प्रकोप हुआ है तो एक ही उसमें ठीक हो
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: उसी को हम लोग कहते हैं स्पॉट स्प्रे जो है,
0: हाँ
1: यदि
0: हाँ
1: जहां
0: हाँ
1: पे आइडेंटिफाई हुआ
0: जी
1: यदि वहीं पे यदि हम उसको पहचान लेते हैं और उतने पे ही ये छिड़काव कर देते हैं तो पूरे खेत में नहीं फैलता है,
0: लागत बचेगी।
1: लागत बचेगी जो है, और दूसरा जो है कि पौधों अन्य पौधों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा।
0: बिल्कुल, लागत बचेगी, मेहनत बचेगी, समय बचेगा
1: बिल्कुल
0: आपका।
1: बिल्कुल
0: मगर ये, इसके लिए सजगता बहुत जरूरी है, ताकि जो गुलाब के फूल हैं वो खुशबूदार हों, बड़े सुंदर सुंदर स्वस्थ फूल आपको मिले। और हम बात तो अभी ऋतुचंद मैम, हम और भी करना चाहते हैं कि जो रजनीगंधा है
1: जी
0: हमारा, है ना, तो रजनीगंधा फूल तुम्हारे, ये हम सुना करते हैं गाना, रजनीगंधा के जो फूल हैं स्वस्थ हों, अच्छी फसल हो, इस समय हमें उसमें क्या शस्य क्रियाएं करनी है?
2: जी देखिए, रजनीगंधा जो है हमने मार्च या अप्रैल में खेत में बो दिया था,
0: जी
2: और
0: जी
2: रोपाई करने के बाद अब पौधे उसके बड़े हो चुके हैं, तो अब निरंतर उसके एक तो निराई गुड़ाई, और एक सिंचाई का हमें ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो उसमें हो सके तो मल्चिंग का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ उसमें हम पानी का हम ये जरूर ध्यान रखें कि सुबह या शाम के वक्त उसमें हम पौधों को पानी देते रहें। तो इस समय यही मेजर क्रियाएं हैं, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम कोई खाद उसमें नहीं डाल सकते। और कीट पतंगे का इस वक्त क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान है तो रजनीगंधा में इस समय कोई भी कीट पतंगा होने का आशंका नहीं है,
0: नहीं
2: तो बस यही ध्यान रखें हम कि पानी के जो है पानी का प्रबंधन जो है उचित प्रबंधन करते रहें। अगर हम पानी का प्रबंधन अच्छा करेंगे तो हमारा जो है रजनीगंधा अच्छा पुष्पन देगा।
0: जी बिल्कुल सही बात है, बड़ी बात है कि निरंतर रख रखाव, बड़ी बात है सजगता और सचेत रहना, बड़ी बात है कि कैसे हम अपनी लागत को कम कर सकें और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता है तो हम जानकारी लें, उसके बारे में समुचित प्रशिक्षण लें। हम इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद, क्योंकि अब हम सुनेंगे समाचार।
3: तो अभी हम बात कर रहे थे, अभी फोन इन विशेष कार्यक्रम हमारा चल रहा था जिसमें हम विषय था गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव, जहां बातचीत कर रही थी, बातचीत विशेषज्ञ के साथ बातचीत कर रही थी नीलम मदान, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य संभाग IARI पूसा नई दिल्ली।
4: जी हाँ, और ये कार्यक्रम जारी रहेगा और आप हमें फोन कर सकते हैं, फोन नंबर बता दें 011-2342-1082 और 80।
5: अब सुनिए हिंदी में समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
7: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
6: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
8: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।
3: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहनों भाइयों को राम राम, राम। तो सरिता बहन फिर दोबारा से हाजिर हैं हम लोग और कार्यक्रम हमारा वही और विषय भी वही रहेगा, गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव, जिसमें हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली पूसा।
4: जी हाँ, डॉक्टर ऋतु जैन, प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग IARI पूसा नई दिल्ली से, और कार्यक्रम का संचालन कर रही है नीलम मदान।
3: और हमारे जो फोन नंबर है एक बार हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं, अपने किसान भाइयों को बता देते हैं।
4: विशेषज्ञ से सीधे बातचीत करने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है वो है 2342-1082 और जो दूसरा नंबर है वो है 2342-1080। और जी हाँ, दिल्ली का पिन कोड है 011। तो भाई आप हमें तुरंत फोन कर सकते हैं और अपने जो भी फूलों से संबंधित, बागवानी से संबंधित सवाल है वो अपने हमारे जो आए हुए आमंत्रित विशेषज्ञ हैं उनसे आप पूछ सकते हैं।
3: चलो अब तो चलते हैं अपने अपने विशेषज्ञों के पास और करते हैं अपनी जो समस्या है उनका समाधान।
0: डॉक्टर मार्कंडेय, डॉक्टर ऋतु जैन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चल रहा है हमारा फोन इन कार्यक्रम, गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव कैसे करें। हमने चर्चा की कि कैसे हम रजनीगंधा में हमने सस्य क्रियाएं क्या करनी है और हमने गुलदाउदी के लिए क्या इस समय प्रवर्धन कार्य करना है ताकि उनका अच्छा प्रवर्धन हो, कैसे खेत की तैयारी करनी है और कैसे फूलों का रखरखाव करना है। और हमने कहा था कि अब हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे बगीचे हैं उनमें हमें इस समय क्या काम करना है डॉक्टर मार्कंडेय, ताकि स्वस्थ रहें वो।
1: जी, हर वर्ष हम लोग 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जो है कि पौधों को लगाएं और जिससे हमारा वातावरण जो है कि शुद्ध बना रहे।
0: जी,
1: और इसी के साथ साथ हम लोगों का जिम्मेदारी का ये बोध होता है कि जो हमारे वर्तमान में पौधे हैं उनको हम रख रखाव किस तरीके से अच्छा करें कि जिससे कि उनकी बढ़वार जो है अच्छी हो। जी, इसके
0: जी जी बिल्कुल हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। जी हेलो।
9: जी मैम। जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हो, क्या नाम है आपका?
9: जी मेरा नाम कृष्णा है, मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ मैम।
0: हाँ कृष्णा जी पूछिए।
9: मैम मेरा ये पूछना है कि जो हम पेड़ पौधे लाते हैं मार्केट से गमलों में लगाते हैं तो धूप में गर्मियों में लू पड़ती है, गर्मियों में धूप है, उससे बचाने के लिए मतलब

0: ज्यादा से ज्यादा क्या उपाय करें, और मतलब और गर्मियों में जो पेड़ों पे फूल हैं वो कम आते हैं, थोड़ा बहुत आके मतलब ऐसी चिपक जाती हैं उनकी कलियां, तो उनके लिए आप मतलब वो बताएं सॉल्यूशन।
1: जी कृष्णा जी, देखिए आपने बात की कि जो आप मार्केट से पौधे खरीदते हैं वो गर्मियों में झुलस जाते हैं और उनके अच्छी जो है अच्छे दिखाई नहीं देते। तो अगर हम बात करें गर्मियों के पौधों की या हम कोई भी पौधों की बात करें, तो खासकर मुझे लगता है आप गमले वाले पौधों की बात कर रही हैं। तो इस समय गमले वाले पौधों को संरक्षित रखना एक बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम किस प्रकार का गमला इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में गमले को हमने किस स्थान पे रखा है, हम कितना पानी दे रहे हैं, किस समय पानी दे रहे हैं और उस जगह पर कितनी धूप आती है, कितनी छाया आती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं गमलों के प्रबंधन के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो अगर हम मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करें तो हमारे पौधे जो हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जो अगर हम प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है तापमान बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक के गमलों में जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जिससे कि मिट्टी जो है गर्म हो जाती है, उसकी जो पौधे की जड़ें होती हैं वो भी उससे प्रभावित होती हैं। दूसरी बात ये है कि आप पौधों को सिंचाई जो है सुबह और शाम के समय करें, दिन के वक्त पौधों को सिंचाई ना करें, क्योंकि दिन में अगर सिंचाई करेंगे तो आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा झुलस जाएगा। तीसरी बात, पौधे जो गमले में लगा रखे हैं उसमें निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहें, ताकि उसमें जितने भी खरपतवार हैं वो समय समय पर अगर आप निकालते रहेंगे तो उनकी बढ़वार अच्छी होगी और जो पौधे को पोषण मिलना है वो खरपतवार नहीं खाएगा। चौथी बात ये है कि आप पौधे को जब भी लगाते हैं उसमें हम गोबर की गली सड़ी खाद, पूरी अच्छे से जो गली हुई सड़ी हुई खाद हो उसको मिलाकर लगाएंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि हो सके तो आप पौधों को गर्मियों में छाया वाले स्थान पर रखिए, और एक साल अगर आपका पौधा चल गया है, एक थोड़ी आवाज़ कम कर लीजिए, मुझे थोड़ा बताने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जो पौधे हैं आपके, तो उनको आप हर साल जो है या 2 साल के बाद गमले को परिवर्तित कर लेंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। कई बार क्या होता है कि हमने गमले में जो पौधा लगाया है और उसको हमने उसी 2-3 साल तक उसी गमले में रहेगा, तो वो उसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को जकड़ लेती हैं और जिसकी वजह से पौधे की बढ़वार नहीं होती, तो उसको बड़े साइज़ के गमले में लगाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे तरह से चलेंगे और बहुत सुंदर दिखेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा।
2: जी थैंक यू, मैं कहूँगी शुक्रिया आपका कृष्णा जी, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा ना, मुझे लगता है बहुत डॉक्टर ऋतु जैन ने इतने विस्तृत तरीके से बताया है कि अब किसी को भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली अपने गमलों का रख रखाव करने में।
0: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: जी आपका भी धन्यवाद। और अब हम जानकारी ले रहे थे कि अपने बगीचों का रख रखाव कैसे करें।
3: जी तो मैं बता रहा था कि जैसे बगीचे में ये देखेंगे तो कई तरह के जो है कि पौधे आपको दिखेंगे, जैसे कुछ हो सकते हैं कि ट्री हो, कुछ क्लाइंबर्स होंगे, कुछ श्रब्स होंगे, कुछ हेज होंगे, कुछ बहुत पुराने पौधे होंगे, कुछ नए पौधे होंगे। ये देखा गया है कि जिन पौधों के जड़ों का विकास कम हुआ रहता है, उनको जो है कि पानी की जो है कि आवश्यकता गर्मी में अपेक्षाकृत जो पौधे ओल्ड एज के होते हैं उनसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो डीप रूटेड होते नहीं है, तो उनमें जो है कि ऊपरी सतह पे पानी नहीं रहता है तो उसमें खींचने की शक्ति नहीं होती है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि पानी का प्रबंधन जितना आपके पास हो पा रहा है तो यंग प्लांट को, जो नए पौधे रोपित हैं उनको सबसे पहले दीजिए, और जो बिल्कुल इस्टेब्लिश प्लांट हैं जिनकी ये क्षमता है कि जमीन से पानी को खींच सकते हैं, उससे वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको जो है कि पानी जो है कि सबसे बाद में दीजिए। दूसरी चीज है कि ये देखा गया है कि गर्मी में जब नमी कम होती है तो कुछ पौधों के ऊपर टर्माइट चढ़ जाती है, दीमक चढ़ जाती है, तनों के ऊपर दीमक आ जाती है और वो धीरे धीरे बार्क को खा जाती है, अब बाद में पौधा जा करके सूख जाता है।
2: जी।
3: तो हमें ये करना चाहिए कि टर्माइट को यदि मारना है तो उसके लिए ऑर्गेनिक जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे नीम बेस, नीमेगान के नाम से इंसेक्टिसाइड आता है, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके यदि हम छिड़काव तने के ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा जड़ के आसपास कर देते हैं, उससे जो है कि टर्माइट मर जाती है और वहां पे नमी यदि बना देते हैं तो

0: जो टर्माइट जमीन की ऊपरी सतह पे आई रहती है वो नीचे की तरफ चली
1: चली
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: है बिल्कुल।
0: जी
1: और हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो।
0: जी
2: हेलो,
1: हाँ
2: नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: मेरा एक सवाल था सर से।
1: अच्छा
2: सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं गुलाब के फूल लगाती हूँ छत पे, तो उनके जड़े, पता नहीं वो छोटे से जड़े क्यों सूख जाती है। मैं कई बार उसमें पौधे में खाद भी डालती हूँ, सभी सभी प्रकार के जो भी खाद आते हैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, और दरअसल उसको उसमें पानी वगैरह भी डालती हूँ, फिर भी वो पनपते नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है?
1: आपने फूल का नाम तो बताया,
2: गुल
1: अपना नहीं
2: गुलाब का
1: बताया।
2: फूल।
1: आप अपना नाम
2: मेरा नाम,
1: बताया। हाँ
2: अच्छा माफ कीजिएगा, मेरा नाम संगीता है, मैं दिल्ली से बात कर रही थी।
1: जी
2: मैं
1: संगीता
2: काफी
1: जी।
2: समय से ये प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप
1: हाँ
2: लोगों का वार्तालाप बहुत ही अच्छा है और
1: जी
2: बड़ा ही एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम भी है। तो
1: जी
2: बस उनसे मैं सर से ये जानना चाहती थी कि कृपया मुझे बताने की चेष्टा करें कि ये वजह क्या है।
0: संगीता जी, जैसे गुलाब के जो लगाने का टाइम है ये दिल्ली के उसमें देखें तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो सबसे अच्छा माना जाता है टेम्परेचर को
2: जी
0: देखते हुए।
2: जी
0: तो
2: हाँ
0: जब आप गमले में गुलाब को लगाती हैं तो सबसे पहले ये देखना कि गमले का आकार कम से कम 10 इंची का आकार होना चाहिए, मिट्टी का गमला होना चाहिए। और
2: जी
0: उसमें जो आप मीडिया डालते हैं जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद, मिट्टी और बालू, उसको हम लोग सुझाव देते हैं कि एक भाग गोबर की सड़ी खाद हो, एक भाग मिट्टी हो, एक भाग बालू हो, ताकि यदि
2: जी
0: ऐसा मिक्सचर यदि आप बनाएंगी तो लगभग ये 3 से 4 साल तक वो गुलाब का पौधा 10 इंची के गमले में जो है बढ़वार ले सकता है।
2: ओहो, दरअसल सर मेरे साथ परेशानी क्या है कि मैं उसमें रेडीमेड खाद डालती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि
0: जी
2: समय समय के साथ साथ मैं उसको जब मौका मिलता है पानी डालती हूँ, और एक अजीब सी बात होती है कि उसमें कलियाँ आती हैं और वो कलियाँ पूरी तरह से फूल की प्रकार में नहीं बदल परिवर्तित होती, तो मुझे लगता है कहीं पे कुछ ना कुछ
0: बिल्कुल
2: गलत है।
0: बिल्कुल, इस तरह से आप मिक्सचर बनाइए और नीचे जहाँ पे ड्रेनेज है वहाँ पे कंकड़ पत्थर रख दीजिए, इसको भर करके अक्टूबर के महीने में आप लगाइए, देखिएगा कि 1 साल के बाद इस पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और इसमें पुष्पन भी अच्छा होगा। इस तरह से ध्यान आप रखिए जो है। जी
1: बिल्कुल सही बात है। और हम चर्चा कर रहे थे फिर से
0: जी
1: कि कैसे बगीचों का रख रखाव रखना, और जैसे मॉनसून हमारी आस और विश्वास है, हम उसका
0: बिल्कुल।
1: इंतजार कर रहे
0: हाँ, मैं बता रहा था कि
1: हैं। जी
0: जैसे दीमक का जब प्रकोप होता है तो उसका निदान के लिए मैं बताया कि वो जैसे नीम बेस इंसेक्टिसाइड नीमेगान 3 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं, तने पे भी करते हैं, मिट्टी के जो तने के आसपास की मिट्टी है उसमें भी डाल देते हैं, नमी बना के रखते हैं, तो इससे जो है काफ़ी बचाव हो जाता है।
1: हाँ जी
0: इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो लोग बालकनी में अपनी बागवानी को किए हुए हैं तो इस टाइम देखा गया है कि पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो गमलों के नीचे जो है एक प्लास्टिक की ट्रे आती है जो है, यदि उसमें भी हम पानी को भर देते हैं तो जो पेड़ों की जो आवश्यकता होती है उसको तो लेता ही है, इसी के साथ उसके वातावरण में नमी बनी रहती है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: जी
1: हमारे से श्रोता जुड़ रहे हैं।
0: जी जी
1: हेलो
2: नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है?
2: मेरा नाम नीरज कुमार, पठानकोट जिला बुलंदशहर से बात कर रही हूँ।
1: हाँ नीरज जी, पूछेगा।
2: मैं बोल रहा हूँ, जो हम फूल लगाना चाहते हैं तो
1: हाँ
2: ये खुशबू के लिए, जो घर का दरवाजा है उसे पूरे तक।
1: आपकी आवाज हमें समझ नहीं आई है, इतना ही समझ आया कि आप फूल लगाना चाहते हैं खुशबू
3: खुशबू
1: के,
3: वाले
1: खुशबू वाले। जी
2: मैं लगाना चाहता हूँ, उनका लगाऊं लिए, और जो अच्छा लगे मन
1: अच्छा, सुंदर भी लगे और
2: से।
1: खुशबूदार भी हो।
2: जी,
0: नीरज जी, ये तो नहीं पता लगा आप कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन
2: गुलाबली
0: जी
2: बुलंदशहर बुलंदशहर से।
0: बुलंदशहर से, तो आप खुशबूदार यदि फूल लगाना है तो अभी जैसे मानसून आ जाता है किसी भी नर्सरी से आप बेला का पौधा लेकर के लगा सकते हैं, हरसिंगार का जो प्लांट होता है उसको लेकर के लगा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में आप जो देसी गुलाब है उसका आप लेकर के पौधे लेकर के आप लगा सकते हैं, और जो आने वाला मार्च होगा मार्च के महीने में रजनीगंधा का जो पौधा है उसके ट्यूबर्स मिलेंगे उसको भी लेकर के लगा सकते हैं। तो ये 4-5 तरह की चीज़ें आपको बताया है, यदि इनको लगाएंगे तो आपके बाग बगीचे के अंदर जो है सुगंधित पेरेनियल जिसको हम बहुवर्षी प्लांट बोलते हैं ये आपके बाग बगीचे में जो है कि इकट्ठे हो जाएंगे और खुशबू जरूर फैलाएंगे।
1: जी जी धन्यवाद आप

0: और हम बात कर रहे थे कि बगीचों में हमने ध्यान रखना है कि दीमक
1: जी
0: ना लगे, और उसके लिए हमें जो नीम वो है जन्य वो है, बना हुआ है पेस्टिसाइड, उसका
1: जी
0: इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: और इसके अलावा बारिश की हम बात कर रहे थे, आने वाली है, इंतज़ार है, उसके लिए हमें क्या करना है?
1: जैसे अभी ये तो हो गया कि जो हमारे ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं उनके
0: जी
1: लिए ये रख रखाव की बात हो रही थी।
0: जी
1: अभी है कि कुछ किसान भाई बागवानी को जो है कि नई बागवानी अपना लगाना चाहते हैं, तो हम लोग ये सुझाव देते हैं कि जून के महीने में आप अपने मिट्टी के जो है कि मिट्टी में जहाँ पे भी खेत की आपने तैयारी की है वहाँ पे गड्ढे जो है आप खोद दें। गड्ढे का आकार इस बात पे निर्भर करता है कि किस तरह के पौधे को आप लगाना चाहते हैं।
0: जी
1: तो जनरली ये सुझाव दिया जाता है कि उसका 1 फीट जो है कि चौड़ाई हो, 1 फीट गहराई हो और इसी आकार के आप गड्ढे लगाएं। और जिस तरीके से बताया गया है कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, उसी अनुसार आप गड्ढे को जो है कि बना करके या मिट्टी को जो है ऊपर की तरफ जो है कि खोल दें। जो है कुछ दिनों के लिए जो है कि मिट्टी जो है कि खुली रहती है, तो उससे ये होता है कि जो हानिकारक जीवाणु और कवक होते हैं वो बढ़ते हुए तापमान में जो है कि मर जाते हैं। अब फिर उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और जो रासायनिक उर्वरक आपके मिट्टी की जांच के बाद जो है कि जो निर्धारित मात्रा दी गई है उसको मिक्स करके मानसून आने से पहले जो है उसको फिर हम भर देते हैं। और फिर जो है जैसे पहला मानसून आ जाता है और तापमान जो है कि मिट्टी का जो है कि कम हो जाता है, फिर ये सुझाव दिया जाता है कि आप प्राइवेट नर्सरी या सरकारी नर्सरी से जो है उस पौधे को ले आइए, लगाइए और
0: जी
1: उसका थाला बनाइए और उसको सिंचाई कीजिए। तो उसमें ये देखा गया है कि ऐसा यदि करते हैं तो पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है
0: जी
1: और उनका मृत्यु दर जो है कि काफी कम हो जाता है जो है।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ और हम बताना चाहेंगे कि चल रहा है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय है कि गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रख रखाव कैसे करें। स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जो आपके मन में आ रहा है कि कैसे बगीचों की रख रखाव करें, फूलों का रख रखाव करें। और नंबर है हमारा 23 42 10 82, दूसरी फोन लाइन है 23 42 10 80, और एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
2: हेलो।
0: जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है?
2: मेरे द्वारा क्वेश्चन है जी, मैं अशोक कुमार शर्मा, गुदावली खुर्द बुलंदशहर।
0: आपने अपना रेडियो चलाया हुआ है साथ में?
2: हाँ, रेडियो बंद कर दिया जी।
0: हाँ आप बताएं।
2: मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी, क्या इस टाइम हम गेंदा और गुलाब दोबारा लगा सकते हैं इस टाइम,
0: अच्छा,
2: पर कौन सा लगाएं गेंदा?
0: ठीक है जी।
1: यदि अशोक जी आपको गेंदा लगाना है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने 3 किस्मों को निकाला है जिसमें पूसा दीप, पूसा पर, पूसा उत्सव। ये जुलाई के महीने में इसकी नर्सरी पड़ेगी जो है, और ये लगभग जो है कि ये मान के चलिए कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से, जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर के अगस्त के पहले सप्ताह में इसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा। और ये दिवाली के टाइम पे, ये फेस्टिवल जो होता है दिवाली, उस टाइम पे जो है कि इसमें पुष्पन आता है और इसके फूल की बड़ी अच्छी कीमत जो है कि अपने घरेलू पुष्प बाजार में मिलती है। रही बात जो दूसरा जो गुलाब है, गुलाब को भी आप लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए हम लोगों के यहाँ रोज शरबत है, पूसा अल्पना है, रोजा चाइनेंसिस है। इनके पौधे जो है कि 15 अक्टूबर के बाद मिलना शुरू होंगे। 15 अक्टूबर से लेकर के और लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक इस पौधे को ले सकते हैं और इसको आप लगा सकते हैं। तो ये 3 किस्में जो है कि गेंदा में हैं और 2 किस्में और 1 स्पेसीज जो है कि गुलाब के अंदर है, जो आपको व्यावसायिक खेती के लिए जो है कि चुन सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जो भी हमारी मांग है, फूलों की मांग है, वो लगातार बढ़ रही है। और खुशी की बात यह है कि जो रकबा है जिसमें खेती की जा रही है वो भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, फूल
1: जी
0: करने वाले भी आगे आ रहे हैं। और हमारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारत के फूलों की मांग है, निर्यात भी बढ़ रहा है। तो अब ज़रूरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस व्यवसाय में आए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी डॉक्टर मार्कंडे आप क्या सोचते हैं डॉक्टर ऋतुजन, आप बताएं।

0: पहले कि क्या है जरूरी, वो कुंजी क्या है।
1: जी, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि अगर हम
0: जी
1: बात करें कि कमर्शियल तौर पे जो
0: मैं माफी चाहती हूँ, अभी मुझे लगता है ये सीक्रेट आपको भी नहीं बताना है, तो हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं।
1: जी
0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी।
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं।
1: मैं योगराज बोल रहा हूँ, गुड़गांव से। एक
0: जी जी बताएं योगराज साहब।
1: तो जैसे जामुन के पेड़ में अब की बार फल नहीं आ रहा है,
0: अच्छा जी
1: और एक दूसरा सवाल है मेरा, जैसे चंद्रमुखी का जो फूल होता है,
0: जी
1: ये जैसे हरिद्वार के आसपास लगता है, क्या हम यहाँ लगा सकते हैं इसको?
2: योगराज जी, पहला आपका सवाल है कि जामुन के पौधे में इस बार फल नहीं लगा है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के अंदर एक फ्रूट डिपार्टमेंट ही है, तो फ्रूट डिपार्टमेंट में यदि एक बार आप संपर्क कर लें, और वहाँ पे डॉक्टर ओपी अवस्थी जी जो है उस विभाग के अध्यक्ष हैं, तो उसका हो सकता है कि समाधान मिले कि भविष्य में जो है कि उसमें फलत हो। और जो चंद्रमुखी का पौधा है, हमें लग रहा है कि आप रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, जो है
1: क्या
2: रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं क्या?
1: जी? नहीं,
2: हेलो,
1: चंद्रमुखी का ये फूल होता है जो पेड़ लगता है, ये हरिद्वार में के आसपास जैसे क्षेत्र में कुछ जगह पे होता है, जैसे इसमें कुछ ऐसे भी बताया गया आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है।
2: देखिए, जैसे आप यदि वहाँ के वातावरण में, यदि मान लीजिए आप मंसूरी के तरफ की बात करते हैं, जहाँ पे तापमान थोड़ा कम होता है, यदि उसको यहाँ पे ले आकर के लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें पुष्पन ना हो, लेकिन पर्टिकुलर यदि हरिद्वार के आसपास हो रहा है तो दो चार पौधे ले आकर के ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको जो
1: ये
2: है।
1: पूसा में इसका बीज मिल जाएगा
2: नहीं, चंद्रमुखी का तो नहीं मिल पाएगा जो है।
0: जी?
2: जी
0: धन्यवाद आपका। और डॉक्टर ऋतु जैन, हम वो रहस्य, वो कुंजी जानना चाह रहे हैं जो कृषि को, पुष्प कृषि को व्यावसायिक रूप से करने के लिए जरूरी है।
1: जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है नीलम जी, क्योंकि व्यावसायिक रूप से जब आप फ्लोरिकल्चर करने जा रहे हैं, फूलों की खेती करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छा फूल चाहिए जिसकी मार्केट बहुत अच्छी हो, और मार्केट अच्छी होने के साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छी हो। तो सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लांटिंग मटेरियल अच्छा हो।
0: जी
1: जो भी हम क्रॉप लगाएं उसकी हम अच्छी वेराइटीज़ लगाएं, अच्छा उसका गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल हो, किसी विश्वसनीय जगह से हम वो बहुत खरीदें
0: जी
1: जिसे भी हमने लगाना है। दूसरी बात, कभी भी हमें फूलों की खेती करनी है या कोई भी खेती करनी है, तो मैं ये ज़रूर कहूंगी कि आप प्रशिक्षण ज़रूर लें।
0: जी
1: तो एक प्रशिक्षण जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक आप अच्छी फूलों की खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी अच्छे संस्थान से उसके लिए प्रशिक्षण लीजिए, और प्रशिक्षण लेने के बाद आपको जो भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं का फ़ायदा लीजिए, और साथ ही साथ मार्केट देखिए कि मार्केट कहाँ पर है। फूलों का बाज़ार आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, और बाज़ार में किस फूल की डिमांड है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका आपको पता होगा, तो आप फूलों की खेती कर पाएंगे और बहुत सारा मुनाफा भी आप कमा सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल सही बात। डॉक्टर मार्कंडे, मैं जानना चाहती हूँ कि इन सब कड़ियों को जोड़ने में प्रशिक्षण कैसे सहायक है।
2: बिल्कुल, प्रशिक्षण बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, और प्रशिक्षण के माध्यम से जैसे डॉक्टर रितु ने बताया किस फसल का चुनाव करना है, किस वैरायटी का चुनाव करना है, खेती करने का क्या तरीका है,
0: अच्छा
2: प्लांट प्रोटेक्शन क्या है, पैकेजिंग क्या है, मार्केट, ये सारी जानकारी वहाँ मिलती है, और ये जो है कि सभी युवा के लिए काफी लाभकारी
0: जी
2: रहेगा।
0: बिल्कुल, धन्यवाद आपका डॉक्टर ऋतु जैन, डॉक्टर मार्कंडे, वाकई ये जानकारी उपयोगी रहेगी, और हम चाहेंगे कि जो हमारे युवा हैं वो इससे जुड़ें और प्रशिक्षण के साथ जुड़ें, और इस समय हमें अपने बगीचों का, अपने फूलों का पूरा रखना है रख रखाव।
3: तो इसी के साथ आज का हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव यहीं समाप्त होता है, और आशा है कि हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।
4: कार्यक्रम में जो जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, वहीं दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर ऋतु जैन, प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी हमारी वरिष्ठ साथी नीनम मदान।
3: जी हाँ, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सभी सुनने वाले भाई बहनों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सात बजकर 30 मिनट होने को है। अब सुनिए गजल।

गजलों के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कहते हैं कि गजल और शामिल गजल फर्क है, क्या फर्क है? क्योंकि वक्त ऐसा होता है जब आप शांत और ऐसे वक्त में जहां पर आप हर काम से निवृत्त हो जाते हैं और बैठते हैं एक चाय की चुस्की लेकर, और जब गजल सुनते हैं तो वो समा इतना खूबसूरत हो जाता है कि गजल का मज़ा दुगुना हो जाता है। तो गज़लों के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं अनिल विश्वास का ये गज़ल।

कि हमने जो सोचा क्या वो सही था। लेकिन यकीन किस पर करते हैं? जी हाँ, किसी ने बहुत खूब कहा है, तुम चाहे लाख गुनाह करो, हमने तो एतवार कर लिया। यकीन ऐसे ही नहीं, वादे सवा कर लिया।

ऐसा मुकाम आता है जहाँ पर वादे भी होते हैं, यकीन भी होता है, लेकिन यकीन तभी होता है जब हमें ये भरोसा हो जाए।

यूं नज़रों का टकराना, यूं नज़रों का टकराना और दिल में हलचल हो जाना, क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं? जो मैंने महसूस किया, क्या उस नज़र ने भी महसूस किया होगा? क्या मोहब्बत का यही आलम सदियों से चला आ रहा है? कई लोगों ने मोहब्बत पर कई बातें लिखी, लेकिन पहली नज़र की मोहब्बत पर किसी ने बहुत खूब लिखा। यूं हलचल नज़रों के टकराने से जो हुआ, हमने तो दुनिया ही खो दिया, और क्या ये मोहब्बत यूं ही उधर भी लगा है? वैसे तो मोहब्बत पे कई बातें लिखी गई हैं, लेकिन इस गज़ल में इसे बहुत ही खूबसूरती से सुनाया गया है। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 7:45 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की जोन ओ में बसी कॉलोनियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मॉनसून पूर्व तैयारियों के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बरसाती जल निकासी नालों की गाद निकालने का काम लगभग 70% पूरा कर लिया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के जोन ओ में बसी कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई नहीं होगी। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने जोन ओ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड संदेश में लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकारी रिकॉर्ड के अध्ययन से पाया गया है कि इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आदेश है वो नए चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज करौल बाग मंडल भाजपा के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित विषयों और स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान नागरिक सुविधाओं, आधारभूत ढांचे और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। श्रीमती स्वराज ने पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों और शिकायतों को संबंधित विभागों के सामने प्रभावी रूप से उठाने और उनके समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविल लाइंस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्वच्छता और प्रदूषण की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा की। इसके अलावा श्री खिरवार ने जहांगीरपुरी स्थित 2000 टीपीडी क्षमता वाले सीएनडी वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। आयुक्त ने धूल की रोकथाम के लिए सीएनडी वेस्ट प्लांट के चारों तरफ शीट्स लगाने और वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्लांट के मुख्य मार्ग पर झाड़ियां लगाने और संयंत्र का सौंदर्यकरण करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि सजग समाज और दूरदर्शी विधानमंडल ही विकसित भारत 2047 के दो सशक्त स्तंभ हैं। ये बात श्री गुप्ता ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित द्वितीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है, बल्कि मजबूत संस्थाओं, नागरिकों और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की साझा संस्कृति से है। संबोधन के दौरान श्री गुप्ता ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जनसेवा वितरण के क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा, पवित्रता और मजबूती पर बल दिया। दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही है। एक रिपोर्ट।
4: अदालत में सीबीआई ने कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार मनीषा वाघमारे ने पैसे के बदले छात्रों को परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए। जांच एजेंसी ने उम्मीदवारों के बयानों का हवाला दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों के लिए पैसे दिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 12 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई के अनुसार मनीषा छात्रों को जुटाने में लगे बिचौलियों में शामिल थी। आरोप है कि इन छात्रों ने विशेष कोचिंग सत्रों में शामिल होने के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया था। यहां परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बताया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित करेगी। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
5: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
3: शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राजधानी में बसों के रोजाना के संचालन और यात्री सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया गया। एक रिपोर्ट।
6: बैठक के दौरान परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी बसें अपने निर्धारित बस स्टॉप पर अनिवार्य रूप से रुकें और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम तरीके से बसों में चढ़ने और उतरने की सुविधा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार और लापरवाही का कोई भी मामला सामने आने पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने डीटीसी के सभी अधिकारियों को बसों की समय सारणी, रूट ऑपरेशन और सर्विस के समय के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
7: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
3: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मानसून की तैयारियों के तहत अपने अधिकार

0: बिहार क्षेत्र में आने वाले तूफानी जल निकासी नालों की गाद निकालने का लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार गाद हटाने का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य वर्षा जल की सुचारू निकासी सुनिश्चित करना, सड़कों पर बाढ़ को रोकना, यातायात जाम को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी में मॉनसून के मौसम के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के समग्र रखरखाव में सुधार करना था। प्राधिकरण ने कहा कि समय पर काम पूरा होने और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीडीए अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शेष कार्य मॉनसून शुरू होने से पहले इस महीने की 15 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और 2 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति से समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के अनुसार मामले की जांच जारी है और अनियमितताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अब तक सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप रिकॉर्ड की गई है। NCRTC ने बताया कि एक दिन में लगभग 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। NCRTC ने कहा कि उपलब्धि NCR में लोगों के यात्रा करने के तरीके में आ रहे बड़े बदलाव को दिखाती है। निगम ने बताया कि दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
1: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनजातीय अस्मिता तथा जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक उल गुलान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा। वहीं दिल्ली के समाज और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन, सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनजातीय समाज को स्वाभिमान, संगठन और अधिकारों की शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जनजातीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। राजधानी में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। वहीं शाम के समय कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की जोन ओ में बसी कॉलोनियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा इन कॉलोनियों

में पुराने निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। गीत मालिका कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

फिल्म संगीत गीत मालिका सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और जब हम किसी से भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन जब बातें बढ़ती है तो शोर चारों बगल हो जाता है। और मोहब्बत की अगर बात हो, ये छुपे कभी नहीं छुपती। और दूसरा है कि इस सवाल का जवाब कुछ और तरीके से भी मिल जाता है। वैसे तो अगर गीतों का देखा जाए तो गीतों को इस तरीके से ही बनाया गया है जिसमें मोहब्बत में क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से मोहब्बत रंग लाती है। इस तरीके के गीत कई सारे बने, उनमें से एक गीत ये भी है। आइए सुनते हैं फिल्म यस बॉस से ये गीत।

कुछ लोग तो जान से अपने महबूबा की तुलना कर देते हैं और कहीं कहीं अपनी महबूबा को चांद ही समझ लेते हैं। और गीतों में भी इन बातों को खूब अच्छी तरीके से बताया गया है। कौन सा वो गीत है जहाँ महबूबा को चांद बताया गया है? बहुत सारे ऐसे गीत हैं, लेकिन उनमें से खूबसूरत गीत ये भी है। आइए सुनते हैं इसे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका मेरी यानी कि पूजा भारती के साथ। और जब फिल्मों की बात होती है तो कई ऐसे फिल्म ऐसे भी आए हैं जिसमें फिल्म तो हिट नहीं हो पाई लेकिन गाने हिट हो गए। उनमें से कई ऐसे गीत हैं जो आज भी हम गुनगुनाते हैं। गीतों का यह सिलसिला, ये सफ़र तभी बरकरार रहता है जब वो गीत आप सुन सकें जो आपके हमेशा जुबां पर रहता है, यानी आप उसे गुनगुनाते रहते हैं। गीतों के सफर में सुनते हैं अगला गीत फिल्म लव से।

फिल्म संगीत गीत मालिका सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीत मालिका में कुछ गीत इस तरीके से बने हैं, उसे भी लिया गया है, जिसमें ये कहा जाता है कि कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब हर किसी का नहीं होता। जी हाँ, ऐसे गीत बहुत सारे बने हैं, लेकिन उनमें से जो प्यारा सा गीत है वो आपके लिए अभी जस्ट हम प्ले करेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर कहेंगे, कुमार सानू की आवाज़ में इस गीत को सुनने का आनंद कुछ अलग ही है। सुनते हैं इस गीत को, फिल्म पापा कहते हैं।

गीतों की खूबसूरती उसके बोल से, उसमें रचे हुए आवाज़, और फिर आता है म्यूज़िक। और कई गीत ऐसे बने हैं जहां इन तीनों का समावेश इतनी खूबसूरती से किया गया जिससे कि गीत हिट हो गए। वैसे तो देखा जाए तो आवाज़ का जादू हर एक गीत को खूबसूरत बना देता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं उस पे म्यूज़िक इतनी खूबसूरत आ जाती है जिससे कि आप सुनते ही उसके उस ताल पर, उस धुन पर बिल्कुल फिदा हो जाते हैं। ऐसे ही गीत हैं जो अब आप सुनेंगे जिसमें आवाज़ का जादू तो जो है सो है, लेकिन उसकी धुन इतनी खूबसूरत और इतनी शांत, इतने सलीके से हैं कि गाना बहुत ही खूबसूरत लगता है। आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।

जीवन में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर ऐसा लगता है कि जीवन पूरा हो गया। जी हाँ, और जीवन में बहुत संयोग से ही ऐसे लोग मिलते हैं। सभी की किस्मत में कहाँ ही होते हैं, लेकिन जिन्हें मिल जाते हैं उनकी किस्मत सबसे खूबसूरत होती है। आइए और सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 800।

10 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय

0: गति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
1: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए

فأتت به قومها

فأشارت إليه.

रूठ जाए सब दुनिया चाहे छूट जाए घर बारी, रूठ जाए सब दुनिया चाहे छूट जाए।

على نفسي ما تفكر.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की

0: उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एमटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज डल डमरू मध्य के पास अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई, जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरल, माही, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 259 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, JAAC, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jayashankar made these remarks.

रास्ते चाहे जैसे भी हो, लेकिन महबूब का वो रास्ता जहाँ से दिल चलकर दिल तक पहुँचता हो, वो सबसे प्रिय होता है। ये गीत कुछ इसी तरीके के बोल बोल रहा है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

और प्यार करने के बाद जब ये एहसास हो कि मेरा मोहब्बत सबसे प्यारा है, तब गीतों के बोल कुछ अलग होते हैं। और जब ये एहसास हो कि मोहब्बत जिससे की है, ये मैंने क्या किया, तब गीत कुछ और होते हैं। गीतों के बोल, उनके राग और संगीत, सब कुछ गीतों को एक अलग मोड़ दे देता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, इसमें क्या कहा जा रहा है।

जब इन गीतों को सुनते हैं, वो आवाज जो मुकेश की थी, वो आवाज उस जमाने में संगीत के नाम पर इतना कुछ दिया हमें कि उन गीतों को याद करके आज भी हम उस राग को अपनाने की कोशिश करते हैं। वो बोलने का तरीका, वो गीत गाने का तरीका, सब कुछ सभी से भिन्न था। इसलिए मुकेश ने अपने गीतों से लोगों को बहुत खुश किया।

जहाँ पर मुकेश के इस गीत को सुना, तो वहाँ पर वो गीत जहाँ पर अपने महबूबा की तारीफ करते हुए वो शब्द बोले गए, कुछ इस अंदाज में।

कहते हैं कि जब मोहब्बत है जहाँ पर, वहाँ पर टकरार भी है। और फिर पहले तुम का चक्कर हर जगह होता है। जी हाँ, मोहब्बत के बनाए हुए उन गीतों को इतने खूबसूरती से सजाया गया है, राग के साथ साथ धुन, धुन के साथ साथ गीत के बोल। यूँ कहें कि गीत के बोल ही इतने खूबसूरत हैं, जिसे अगर खूबसूरती से गाया जाए, खूबसूरती के धुन से सजाया जाए, तो गीत और भी खूबसूरत हो जाते हैं।

0: नहीं है वल्ला
1: जवाब। कहीं कहीं मोहब्बत में बहुत मशक्कत है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि दिल में आखिर क्या है। तो क्यों ना दिल की आवाज ही सुना दी जाए।

हाँ, जब बात आती है कि दिल से दिल तक बात पहुंच चुकी है, तब ख्वाब सिर्फ एक ही देखता है, ये दिल अपने महबूब के साथ वो बिताए हुए पल, या फिर वो बिताने के लिए वो पल ढूंढता है। ख्वाब ऐसे होते हैं जिसे पूरा करने के लिए दिल का तड़पना जरूरी हो जाता है, और गीतों में इसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है।

कहते हैं कि जब मोहब्बत की राहें बहुत तकलीफ भरी होती है, तब भी मोहब्बत करने वाले भटकते नहीं हैं। राहों को जितनी भी तकलीफ क्यों ना बना दो, ये दिल मोहब्बत के नाम पर धड़कता रहेगा।

0: तो मोहब्बत का ये जादू कोई एक ही तरफ थोड़ी ना होता है, दूसरे तरफ भी यही जादू चल रहा है। अपना महबूब कितना प्यारा लग रहा है, और वो तारीफ, वो अदाएं, वो शोखियाँ, सब कुछ उस तारीफ में जब एक साथ सिमट कर आ जाए तो गीत कुछ इस तरह से बनते हैं।
1: जुल्फ से।

और फिर वो समय भी करीब आ गया जब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की बात होती है। और जी हाँ, समय के समाप्त होने पर ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन एक गीत तो और भी है जो आप और हम सुनेंगे और फिर उसमें डूबेंगे भी, और ये भी कहेंगे कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। जी हाँ, फिलहाल इस कार्यक्रम से, यानी कि फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा की फिल्मी संगीत से मुझे दीजिए अनुमति। आप सुनिए कि गीत और फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7 से। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सवाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री

0: अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामबला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged in several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, JAAC, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that the foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that the national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation yesterday with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over this escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। 3 बजने को है, अब सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आईएनएसए ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक एआई का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत एआई विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दाम्बला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारतीय ने श्रीलंका को 108 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
4: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, JAAC, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation yesterday with the Emir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for the earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Emir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka Anuradha Kumarasinghe, in a letter, said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea James Marape, in a personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago Kamala Prasad Bisesar noted that under the leader of Prime

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गज़ल थी, और अब अगली पेशकश गुलाम अली की आवाज़ में है, चुप चुप के पियो।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में गाइस गज़ल के साथ ही आज की गज़लों का कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। चार बजकर 20 मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं मिनी एंड। आपने प्रस्तुत किया है रागम कल्याणी जो मिश्र चापू ताल में निबद्ध है। संगीत दिया है स्वाति तिरुनाल ने और मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। और लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योग होगा बद्ध पद्मासन। फिर आप सुन सकेंगे 5:20 पर देशभक्ति गीत। 5:30 का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जल तरंग, प्रस्तुत करेंगे मनीष शर्मा।

चाय बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 46 पर चिंतन प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों पर चिंतन। रामचरितमानस से पाठ आप सुन सकेंगे 6:45 पर। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 82। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार। साथ ही आप सुनेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। आज आप सुनेंगे डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी के गाए भजन। 7:30 सुनिएगा गीत भरी गुड मॉर्निंग। 8:00 आप सुन सकेंगे समाचार। 8:45 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर्ग गंगा का। आज आप सुनेंगे शेख फरहान अमीन का गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मिया की तोड़ी। 9:15 का समय रहेगा साइंस मैगजीन का। 9:30 सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी में है। 10:10 पर सुनिएगा आपकी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम और 11:10 पर सुनिएगा सबरस कार्यक्रम। 11:30 सुरमंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे जयश्री। आप प्रस्तुत करेंगे राग बहादुरी तोड़ी। 3 आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं के अलावा एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल बनाने तथा सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमणियन ने बैठक में साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम रेंज 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:10 में हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।
1: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर मन आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है, यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है, व्यक्ति के व्यवहार विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है, फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें, इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी जुकाम बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांग पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें।